0: हेलो कानपुर।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं हमसे?
1: जी। मैडम जी, प्रवीण कमल।
0: प्रवीण कमल जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया है मैडम जी, आप कैसी हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और बहुत अच्छे हो गए ये सुनकर कि आप अच्छे हैं।
1: जी
0: क्या कर रहे हैं
1: मैडम
0: आजकल?
1: जी, बहुत दिनों बाद बात हो रही है।
0: बहुत दिनों के बाद बात हो रही है, और बहुत खुशी हो रही है ना बात करके।
1: जी
0: आजकल क्या चल रहा है लाइफ में?
1: इस समय तो मैडम जी कुछ नहीं, पढ़ाई चल रही थी, BTC कर रहे थे। जी
0: अच्छा जी, शिक्षा के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि चल रहा है नशा मुक्त भारत अभियान, इसके बारे में आपने भी सुना होगा,
1: जी
0: है ना?
1: नशा कई प्रकार के होते हैं।
0: हाँ, कई प्रकार के
1: जी
0: होते हैं। अगर हम उनके नाम ना भी लें तो हम सभी अंडरस्टूड है कि किस तरह के नशे किए जाते हैं। और हमारा जो युवा है,
1: जी
0: कभी कभी हमारे देश का युवा भी भटक जाता है, आपने भी देखा होगा,
1: जी
0: स्कूली बच्चों को
1: जी
0: भी देखा होगा।
1: जी
0: तो
1: उससे उससे बहुत बड़ा असर पड़ता है अगली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि नशा तो बहुत ही खराब चीज है, और नशा ना ही करें तो अच्छा है।
0: तो
1: खाने पीने के
0: हमारे
1: लिए तो बहुत चीजें हैं।
0: बहुत सारी, बड़ी अच्छी बात की, खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो नशा किसी भी तरह का करना अच्छी बात नहीं है। हमारी सेहत तो जाती ही जाती है, और हमारे जो परिवार का सुख है वो भी चला
1: जी
0: जाता है। मानते हैं इस बात को?
1: जी जी जैसे कि ये सिगरेट का नशा ज्यादा कुछ करते हैं, उससे कि फेफड़ों पे बहुत ज्यादा ही असर होता है।
0: हाँ जी।
1: जी,
0: और अगर
1: और तम्बाकू तम्बाकू ऐसी चीज है कि उससे तो आंख की रोशनी भी चली जाती है, और हम तो मान लो कुछ खाते भी नहीं है, फिर भी आंख की रोशनी अभी बीच में चली गई थी।
0: अच्छा जी, स्क्रीन टाइम
1: जी
0: ज्यादा रहा क्या आपका?
1: जी जी
0: हाँ, तो ये भी एक तरह का नशा ही है, ये भी एक नया नशा है, जो ये भी जिंदगी को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो इसके प्रति भी हमें जागरूक होना है। तो हम अगर नशे की बात करें, तो हर तरह की नशे की बात,
1: फोन चलाने भी दिक्कत होती है ज्यादा।
0: हाँ, कि हमारे लिए जो
1: जी
0: खराब है और जिससे हमारे परिवार को दिक्कत हो, तो हमें इस तरह के किसी भी काम में शामिल नहीं होना चाहिए।
1: नहीं होना चाहिए।
0: अब एक चीज और, कि जैसे हमने नशा मुक्ति भारत अभियान की बात की, तो हमें ऐसी क्या चीज है जो इन चीजों से दूर रखने में बहुत सहायक होती है? जून का महीना चल रहा है, 8 तारीख है आज, रेनबो में आपकी कॉल लगी है 102.2
1: जी
0: FM पर। जून में ही एक बहुत खास तारीख है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उत्सव की तरह मनाई जाने वाली है, जिसकी तैयारियां पूरे देश में, और बल्कि देश से बाहर दुनिया में भी उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं।
1: सही होगा
0: हाँ, आपने अच्छा गेस किया
1: जी
0: कि योगा डे होगा उस दिन, और भारत ने
1: जी
0: ही इसकी शुरुआत की थी, तो हमारे लिए तो बिल्कुल प्राउड करने वाली ये बात है।
1: योग करना तो बहुत अच्छी बात है, उससे तो शरीर के लिए तो बहुत लाभदायक है।
0: बहुत लाभदायक है, और नशे
1: जी
0: जैसी जो एक बुरी चीजें जो हमारे अंदर आती हैं, वो भी दूर करने में योगा बहुत सहायक होता है। अच्छा लगा आपसे बातचीत।

0: करके। और बताइए गाना कौन सा सोच के रखा है प्रवीण जी आपने?
1: गाना मैडम जी हमको सुनना है साथी मूवी का,
0: साथी मूवी का कौन सा गाना?
1: हुई है अखनम अरे दिल मुस्कुराया।
0: अच्छा जी।

0: हेलो कानपुर,
1: हेलो।
0: स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: हाँ मैडम, नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताएं।
1: राजेश बोल रहा मैडम।
0: क्या करते हैं राजेश जी, और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: यही कानीपुर से मैडम।
0: कानपुर में कहाँ से?
1: पी रोड से।
0: पी रोड से बात कर रहे हैं आप, क्या करते हैं?
1: बस ऐसे थोड़ा बहुत इधर उधर काम चलता रहता है।
0: अच्छा जी, क्या उम्र है आपकी?
1: 57 साल।
0: अच्छा जी, तो और घर में कौन कौन है आपके?
1: सभी लोग हैं, मिसेस हैं, बच्चे हैं।
0: अच्छा जी, यानी कि आपके पास फुर्सत का खूब समय रहता है, तो आप हमारे प्रोग्राम्स को अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं।
1: जी जी जी
0: चलिए आज

0: बताइए कौन सा गाना हम आपको सुनवा दें प्रोग्राम?
1: रखवाला का सुना दीजिएगा मैडम।
0: रखवाला का कौन सा?
1: वो मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज में।
0: बोल गीत के नहीं बताएंगे?
1: याद नहीं, रहने दो ऐसे कुछ है।
0: अच्छा।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: बबलू बोल रहे हैं मैडम,
0: बबलू जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: नबीपुर
0: हाँ जी,
1: से। नबीपुर फल
0: क्या करते हैं बबलू आप?
1: की दुकान है मैडम, हम इस समय दशहरी आम बेच रहे हैं।
0: केवल दशहरी आम लगाए हैं?
1: जी जी
0: अभी उसी की मांग है ना?
1: जी मैडम।
0: अच्छा जी,

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो गांडू मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: बबलू बोल रहे हैं मैडम,
0: बबलू जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: नबीपुर
0: हाँ जी,
1: से। नबीपुर फल
0: क्या करते हैं बबलू आप?
1: की दुकान है मैडम, हम इस समय दशहरी आम बेच रहे हैं।
0: केवल दशहरी आम लगाए हैं?
1: जी,
0: अभी उसी की मांग है ना?
1: मैडम
0: अच्छा जी, तो आम के सीजन में लोग आम खाना पसंद करते हैं।
1: फसल की फसल हर चीज बेचते हैं
0: हाँ, और आम
1: इस
0: एक
1: समय।
0: ऐसा फल है जिसे सभी पसंद भी करते हैं, है ना? लोगों को कहा जाए कि ये दीवाने हैं, तो बिल्कुल आम के लोग दीवाने होते हैं।
1: जी मैडम।
0: बताइए, गाना कौन सा सुनवा दें बबलू आपको?
1: मैडम आज गाना सुनना है, 3 बेटियां फिल्म का गाना है यार मेरी, तुम

0: अरे मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: हेलो कानपुर।
2: हेलो कानपुर,
1: बताइए क्या हाल चाल है आपके, और नाम भी बताइए।
2: अभी नाम भी बताएंगे, अपने हाल चाल भी बताएंगे मैम जी।
1: हाँ जी,
2: गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और हमें बादल बरसने के आधार तो नजर नहीं आ रहे हैं। फिर भी मैं अपना परिचय आपको बता देता हूँ। मैं आपका बहुत पुराना श्रोता निराला बाकरगंज ट्रांसपोर्ट नगर से बोल रहा हूँ। मैं 1965 से जुड़ा हुआ हूँ।
1: बिल्कुल भाई, आकाशवाणी अपने सुनहरे सफर का, न जो 90 वर्ष का सफर है उसका, उसको सेलिब्रेट कर रहा है, तो वो क्यों सेलिब्रेट कर रहा है, कैसे सेलिब्रेट कर पा रहा है, आप जैसे श्रोताओं के बल पर ही तो ना।
2: सबसे बड़ी खुशी तो हमको ये हो रही है।
1: हाँ,
2: ये ऑनलाइन प्रोग्राम दोबारा शुरू हो गया जिसके लिए हम बहुत परेशान थे,
1: तो बस आप सबकी दुआएं हैं जो लगी कि प्रोग्राम फिर से स्टार्ट हुआ है।
2: मैम थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए, मैं आपकी आवाज पहचान तो रहा हूँ।
1: मीनाक्षी शुक्ला मैं बात कर रही हूँ आपसे।
2: मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: और ये है मैम जी कि मैं एक गीत आपसे निवेदन करना हूँ सुनाने के लिए। फिल्म का नाम है पालकी।
1: अच्छा जी।
2: हाँ, और जिसके संगीतकार हैं नौशाद साहब और गीतकार हैं शकील बदायनी साहब।
1: बोल बता दीजिए।
2: बोल है कल रात जिंदगी से उंगला

तो साथियों, ये था आज का फोन इन प्रोग्राम हेलो कानपुर। आप सुन रहे थे 102.2 एफएम की फ्रिक्वेंसी पर अपनी रेडियो दोस्त एंड प्रोग्राम की होस्ट आरजे मीनाक्षी के संग। आज के इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे प्रवीण शर्मा और अन्नपूर्णा जायसवार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राहुल पाल। तो दीजिए आज इस प्रोग्राम से मुझे यहाँ पर इजाजत। मिलूंगी फिर कभी आपसे गीत संगीत की किसी सुंदर सुहाने से मोड़ पर। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। नमस्कार।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। सुनिए FM समाचार। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को योजना के अंतर्गत मिलने वाली 9 मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आज पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों के समग्र विकास से जुड़ी सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा से पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, स्वच्छता व्यवस्था और सुदृढ़ बनाने तथा डिजिटल सुविधाओं का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा आज लखनऊ के विभिन्न केंद्रों पर शुरू हुई। जिलाधिकारी विशाख जी और संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी विशाख जी ने बताया कि लखनऊ में परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। प्रत्येक पाली में 22,500 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। 3 दिनों में 1,35,000 से अधिक लोग परीक्षा देंगे। परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए चारबाग रेलवे स्टेशन, कैसरबाग बस अड्डा और आलमबाग बस अड्डे से परीक्षा केंद्रों तक कनेक्टिंग परिवहन उपलब्ध कराया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, LPG और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खन्नुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और LPG का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि ईंधन का निर्बाध आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा, संस्कार, सुशासन और सम्मान पखवाड़े के तहत कानपुर देहात में प्रतिबुद्ध वर्ग संवाद कार्यशाला में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला शामिल हुई। उन्होंने केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जी हाँ बिल्कुल, कहा ना प्यार है कहो ना प्यार है, यही एक मूवी थी जिसने ऋतिक रोशन को ऋतिक रोशन बना दिया। जी हाँ नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, 5:09 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में और एक बार फिर शादाब आप सभी के सामने हाजिर है प्रोग्राम लेकर टॉप 10। और ये जो टॉप 10 है, ये अगले 10 गाने जो आप सुनने वाले हैं अपने रेडियो पर, इन गानों के पीछे क्या स्टोरी रही है सीरियसली बताऊं यार। ऋतिक रोशन ने जब डेब्यू किया ना, तो यही एक मूवी थी जिसने ऋतिक रोशन को लोगों के दिलों में दिमाग में बसा दिया था, रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। और यकीन जानिए ये जो फिल्म है कहो ना प्यार, इस फिल्म ने और कई अवार्ड्स जीते थे और साथ ही साथ इस फिल्म का जो म्यूजिक था वो सबसे ज़्यादा चर्चित रहा था। और एक चीज़ और अगर आपको यहाँ याद दिलाऊँ, जो सबसे ज़्यादा चर्चित रही थी या यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा लोग अपना रहे थे, वो थे इस जो गाने हैं, इस गानों में जो डांस स्टेप यूज हुए थे, याद है ना कौन है प्यार का डांस स्टेप, यस वो गाना है, जैसे ही बजेगा वो आपको याद आ जाएगा। फिलहाल अगले गाने की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक एड ब्रेक, एड ब्रेक के बाद चलेंगे अगले गाने की ओर और अगले गाने के में भी बताएंगे कि आखिर क्या खास बात थी और क्यों ये गाना हुआ था इतना फेमस। ओके,
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल एट हरदो।

जी हाँ, रिफ्यूजी फिल्म से ये गाना आपने सुना ओनली 100.7 एफएम रेनबो पर। और ये फिल्म आपको पता है इन दोनों के लिए डेब्यू फिल्म थी, और कुछ लोगों के लिए डेब्यू फिल्म बहुत यूनिक और बहुत लकी रहती है, जैसे कि इससे पहले वाले ऋतिक रोशन थे, उनकी डेब्यू फिल्म उनके लिए लकी रही और वहीं से उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया, और कुछ लोगों के लिए शायद उतनी लकी नहीं होती है। तो आपको जैसे पता है इस फिल्म में दो लोगों ने डेब्यू किया था, वो थे अभिषेक बच्चन और करीना कपूर, इन दोनों ने डेब्यू किया था इस फिल्म से, और काफ़ी अच्छी फिल्म थी और इसके गाने भी काफ़ी हिट हुए थे उस वक्त, लोगों ने बहुत पसंद किए। उसके बाद एक्टिंग में थोड़ा सा लोगों को मलाल था कि हाँ शायद कुछ और एक्टिंग अच्छी हो सकती थी। फिलहाल अभिषेक बच्चन की एक्टिंग आपने हर जगह देखी है, लगभग सिमिलर ठीक ही रहती है। खैर, बात करेंगे हम अगले हमारे तीसरे गाने की ओर चलेंगे बिना देर के। अगला गाना आप सभी के लिए आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं और इससे जुड़ी हुई और बातें आप तक जरूर पहुंचाएंगे।

कुछ मूवीज होती हैं जो मूवीज कह सकते हैं कि अपनी गानों की वजह से सबसे ज्यादा हिट होती हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप यकीन जानिए उनमें से ये एक मूवी थे। धड़कन मूवी का ये गाना सुना, ये गाना और इसके अलावा धड़कन मूवी के और भी गाने इतने पसंद किए गए थे कि भाई उसके अलावा मतलब उसके सामने स्टोरी और एक्टिंग और ये सारी चीज़ें फीकी पड़ गई थी। मतलब लोग पसंद तो कर रहे थे लेकिन सबसे ज़्यादा गानों को पसंद कर रहे थे। और ऐसे एक नहीं कई फिल्मों के साथ होता है, और मोस्टली आपने ये देखा होगा इमरान हाशमी की जो फिल्में होती हैं उनके साथ, क्योंकि इमरान हाशमी की जितनी मूवीज होती हैं ना उनमें गाने बहुत सॉलिड होते हैं, गाने बहुत पसंद आते हैं, एक्टिंग और स्टोरी बाद में दर्शक देखते हैं। फिलहाल अगले गाने की ओर चलते हैं। चौथा गाना आप समझिए रेडियो सच पर।

जी हाँ बिल्कुल, आपको याद है ये मूवी जब आई थी तो कमाल कर गई थी यार। यकीन जानिए शाहरुख खान और उनके साथ जो तीन सपोर्टिंग एक्टर्स थे, इन्होंने एक अलग पहचान बना ली थी मोहब्बतें मूवी से। और मुझे तो वो याद है जब शाहरुख खान वो वायलिन बजाते हैं और एक ख़ास तरह की उन्होंने डिज़ाइन पैंट पहन रखी थी, और वो तब से इतनी क्रेज़ में आ गई थी कि मेरे कज़िन्स और मेरे कई लोग ऐसे थे जिन्होंने वो पैंट बिल्कुल उसी अंदाज से सिलवाने की बहुत कोशिशें की, और कोशिश उनकी कामयाब भी हुई थी, उन्होंने सिलवाई भी थी। तो एक ट्रेंड सा बन गया था, और उस वक्त मोहब्बतें मूवी के गाने हों हर लगभग शादियों में बजते थे, हर जगह वो गाने आपको ज़रूर सुनाई देते थे। फिलहाल ऐसी कई मूवी 2000 और 2001 में आई हैं। फिलहाल अगले गाने की ओर चलते हैं और अगला गाना देखते हैं कौन सा है। यस, ये रहा अगला गाना आप सभी के लिए।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के,
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
5: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
4: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
5: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।
7: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ की। 5:31 हो चुका है और हर एक गाने में कुछ ना कुछ स्टोरी जरूर छुपी हुई है। और जो भी आपने हाल ही में गाना सुना सूरज जो मध्यम, इसके बारे में मैं आपको ये चीज जरूर बताना चाहूंगा कि इसकी जो शूटिंग है ना, उसका एक बड़ा हिस्सा इजिप्ट में, मिस्र में शूट हुआ था, पिरामिडों के पास हुआ था। आपने इन गानों में देखा होगा बड़े बड़े पिरामिड्स हैं। सो बॉलीवुड में एक नया दौर लाया गया था कि कई ऐसे, उस वक्त के दौर में कई ऐसे जगहों को तलाशा जा रहा था जो बिल्कुल ऐसी थी कि शायद वहां अभी तक कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं पहुंचे हैं, लोकेशंस के लिए नहीं पहुंचे हैं। तो उनमें से एक थी ये फिल्म जिसमें मिस्र को दिखाया गया और उसके इजिप्ट के जो पिरामिड हैं वो दिखाए गए। और इसके लिए उनको ना बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े थे। कह सकते हैं कि ना बॉलीवुड को के लिए वो एक भव्य प्रोडक्शन था, बहुत बड़ा टास्क था उस वक्त ये करने के लिए। फिलहाल शाहरुख के साथ उस वक्त लाइन से चल रहे थे सलमान और आमिर। तो एक और जो मूवी है उसके गाने को पहले सुनते हैं, फिर उसके बाद मैं बात करूँगा इनके बारे में भी।

मिनट हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में और ये मूवी थी लगान। और मुझे लगता है कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा जिसने लगान मूवी ना देखी हो। और उसमें जब लगान में अंग्रेजों से जो मैच होता है, कमाल था यार। और वो कॉन्सेप्ट, वो स्टोरी जो फिल्माई गई है वो कमाल थी। और बहुत अच्छे से इस मूवी को सभी ने इंजॉय किया। और ख़ास बात इस मूवी की ये थी कि ये मूवी ऑस्कर में गई थी ऑलरेडी, तो ये बड़ी आधिकारिक एंट्री हुई थी ऑस्कर में इस मूवी के लिए। खैर ये अलग बात है कि लगान मूवी अंग्रेज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी क्योंकि वो मैच हार गए थे। फिलहाल अगले गाने की ओर चलते हैं और ये भी एक आइकॉनिक मूवी थी। इस गाने को ज़रूर सुनिए, फिर बात करेंगे इस मूवी के बारे में।

ऑलराइट, सो आपने इस गाने को सुना और ये गाना आइकॉनिक मूवी का था। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार ये मूवी ना कमाल थी, और ये जब मूवी आई तो मतलब एकदम देश से जुड़ी हुई जो खून खोलता है ना, वो हमारा खोल गया था, क्योंकि बगल वाले जो देश है उसके खिलाफ हम लोग खड़ा हो गया था। सो ये मूवी कदर ऊर्जा काले का भाई, ये उस फिल्म का ये गाना और इस मूवी की स्टोरी बड़ी कमाल थी। आइकॉनिक मूवी जितनी भी थी उस वक्त जो 2000-2001 में आई हैं, वो यकीन जानिए एकदम दिल को उतर गई हैं। और अभी भी मुझसे या आपसे कोई भी गाने के बारे में पूछे, अगर ये गाना बजे और आपसे पूछे कि किस फिल्म का गाना है, आप मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगाएंगे और ये बता देंगे ये फिल्म गदर का है। तो आप सोचिए कि क्या फिल्म और क्या गाने थे जो एकदम दिल को घर कर गए हैं, एकदम उतर गए हैं, दिमाग में बस गए हैं। और ऐसे एक नहीं कई गाने हैं आइकॉनिक मूवी के। आजकल के गाने आप सुनेंगे, वैसे सारे गाने अच्छे होते हैं, लेकिन मूवी बता पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप उन गानों की बात करें जिन्होंने आपका दिल और दिमाग अपने बस में कर लिया था, उनके बारे में तो आप बिल्कुल बता पाएंगे। वैसे ही कुछ अगला भी गाना है, देखिएगा सुनिए, और आपको पक्का मैं बता रहा हूँ ये म्यूजिक जैसे ही आप इनकी सुनेंगे वैसे आपको ध्यान में आ जाएगा कि कौन से फिल्म का गाना है।

मैंने आपसे बोला था यकीन हुआ ना, जैसे ही म्यूजिक बजी थी आपने पहचान लिया था गाना किस फिल्म का है, रहना है तेरे दिल में। और इकलौते एक्टर जो जहन में आपके तुरंत आए होंगे वो हैं आर माधवन। सो आर माधवन की वैसे तो डेब्यू फिल्म ये नहीं थी क्योंकि ये साउथ के एक्टर थे और उधर से पहले ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके थे, लेकिन फिलहाल इन्होंने इधर जब बॉलीवुड में अपना कदम रखा ना तो ये फिल्म इनके लिए कमाल साबित हुई। और उसके बाद से मुझे लगता है ज़्यादातर बॉलीवुड की फिल्में जो काम आई, मतलब बॉलीवुड में या पूरे इंडिया में पहचान बनाने में, वो बॉलीवुड की मूवी काम आई हैं आर माधवन के।

0: लेकिन फिलहाल इन्होंने इधर जब बॉलीवुड में अपना कदम रखा ना, तो ये फिल्म इनके लिए कमाल साबित हुई, और उसके बाद से मुझे लगता है ज़्यादातर बॉलीवुड की फिल्में जो काम आई, मतलब बॉलीवुड में या पूरे इंडिया में पहचान बनाने में, वो बॉलीवुड की मूवी काम आई हैं आर माधवन के। अगले जो एक्टर हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने भी इस मूवी से डेब्यू किया था। वैसे पहचान पाना मुश्किल है कि वो कौन से एक्टर हैं, क्योंकि आप शायद वो इंडस्ट्री में बहुत कम दिखते हैं, लेकिन ये उनकी डेब्यू मूवी थी जो अगला गाना आएगा। लेकिन उस गाने से पहले एक छोटा सा एड ब्रेक, एड ब्रेक के बाद वापस उस गाने पर चलेंगे।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

और फिलहाल आजकल तो वैसे गायब हो चुके हैं तुषार कपूर, बिल्कुल फिल्मों से दूरी बना चुके हैं। ये इनकी डेब्यू फिल्म थी मुझे कुछ कहना है, और मुझे लगता है मुझे अब बहुत कुछ नहीं कहना है, प्रोग्राम को मैं वाइंड अप करता हूँ यहीं पर। एक और गाना जो आप सभी का बहुत फेवरेट है, और उस वक्त जो लोग बहुत मतलब कह सकते हैं ना प्यार में थे, बहुत ज़्यादा किसी को प्यार करते थे और उनका दिल टूट गया था, तो उसके बाद सिर्फ एक ही गाना उनको सुनाई देता था, और वो था ये गाना, इस फिल्म का गाना। सो ये 10वां गाना आप सभी के रेडियो सेट्स पर, और ये गाना जिस फिल्म का था ना, वो फिल्म जितनी प्यारी थी उसके गाने उतने ही प्यारे थे, यकीन जानिए। आप इस फिल्म को ज़रूर आपने देखा होगा, ये गाना ज़रूर सुना होगा। चले मैं मिलता हूँ आपसे शाम आवाज में, कहीं जाइएगा, स्टे ट्यून्ड विद 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की, मैं हूँ शादाब।

जी हाँ, इतना कुछ इनको कहना था और इन्होंने कह भी दिया, मुझे भी कुछ कहना है। 5:53 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में। केके की आवाज में आपने ये गाना सुना और इस गाने में थे तुषार कपूर और करीना कपूर। तो तुषार कपूर को जो भी कहना था उन्होंने इस फिल्म से कहना शुरू किया था। वैसे इनकी जो फिल्म हिट हुई थी उसमें इन्होंने कुछ नहीं कहा था, मतलब इन्होंने जो बिना लिपसिंग वाला काम किया था ना, वाली फिल्म इनकी हिट हुई थी। इन फिल्मों में इनका जादू नहीं चल पाया था।

जी हाँ, एक बार वापस मैं आप सभी के साथ वापस जुड़ा हूँ क्योंकि ये फिल्म का नाम बताना बहुत जरूरी था। वैसे नाम मुझे लगता है ध्यान आ गया होगा। ये फिल्म थी तुम बिन, और तुम बिन का ये गाना जो आप सभी ने सुना, और उसके जितने भी गाने आप सुनेंगे यकीन जानिए वो गाने आपको बेहद पसंद आएंगे। आए थे कि नहीं आए थे? और अगर आपके साथ कुछ ऊपर नीचे हो गया था प्यार में तो ऑब्वियसली मतलब ये गाने तो आपके फेवरेट थे उस वक्त, है ना, थे ना। तो चलिए इन गानों के साथ आगे बढ़ते हैं एक बार फिर, ठीक है ना।

नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। सुनिए एफएम समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में जो कार्य किए गए हैं उसके परिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना से उत्तर प्रदेश को विशेष लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आज केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बटन दबाकर क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम की पूर्व जानकारी किसानों की आमदनी बढ़ाने और आकाशीय बिजली, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और ओलावृष्टि के कारण होने वाली जनधन की हानि को रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक के दूबेपुर बसारी ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत बने मिनी स्टेडियम का केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी शहरों जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि गांवों की प्रतिभाएं निखर कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक विकास के साथ अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को भी मजबूत बनाते हैं। गौतम बुद्ध नगर में आज यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 90वीं बैठक बोर्ड बैठक अध्यक्ष और एवं अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं, औद्योगिक निवेश, किसानों को 7% आबादी, भूखंड आवंटन और आधारभूत संरचनाओं के रखरखाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बोर्ड ने सड़कों, सीवर, बिजली, पेयजल और पार्कों जैसी आधारभूत सुविधाओं के दीर्घकालिक रखरखाव के लिए एक कॉपर्स फंड बनाने का भी निर्णय लिया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। आकाशवाणी रामपुर ने आज इस अवसर पर आकाशवाणी वॉकाथॉन 2026 का आयोजन किया। सीआरपीएफ रामपुर के डीआईजी पूर्ण सिंह धर्मशक्तु और आकाशवाणी रामपुर की पूर्व सहायक केंद्र निदेशक मनदीप कौर ने हरी झंडी दिखाकर इस पैदल मार्च को रवाना किया। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में मौसम शुष्क रहने, जबकि 10 जून से 14 जून तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान भी जताया है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा।

भाई देखो, कई हद तक बात तो सही है, हम हैं नए तो अंदाज क्यों हो पुराना। लेकिन कई बार ये होता है कि यार अंदाज पुराना जो है वो बहुत पसंद आ जाता है, और वापस वो जो फैशन है, वो सारी चीजें वो रिबाउंड होती हैं, वो वापस आती आती हैं। 6:09 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में। मैं हूं शादाब, आप सभी के साथ नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। प्रोग्राम शुरुआत हो चुकी है, वो है शाम अवध। अवध की शाम ढलने लगी है, गर्म है थोड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है अवध की शाम। आजकल तो खुशनुमा मौसम भी नहीं कह सकते। तो जो लोग अलग अलग शहरों से सुन रहे हैं, किसी अलग स्टेट से सुन रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो MP हो, चाहे वो राजस्थान हो, या किसी भी स्टेट से सुन रहे हैं जहाँ पर अच्छा मौसम है, थोड़ा इधर भेजो ना। क्योंकि इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है, और उम्मीद है कि ये गर्मी जल्दी से जल्दी जाएगी और मौसम नरम पड़ेगा, तो कुछ हम लोगों को भी मज़ा आएगा बाहर निकलने में, घूमने में। तो आज क्या क्या होगा, मतलब गर्मी आएगी जाएगी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें बात करेंगे, क्योंकि हमारे नॉर्थ में या हमारे अवध में क्या होने वाला है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट कि भाई जो इम्तिहान चल रहा है, यस एग्ज़ाम, जो पुलिस का, यूपी पुलिस के सिपाहियों की जो भर्ती के लिए एग्ज़ाम चल रहा है, उसके लिए शहर में बहुत ढेर सारे परीक्षार्थी आए हुए हैं। ये दो पाली में चल रहा है, सुबह 10 से 12 और 3 से 5। सो 3 से 5 वाले फ्री हुए होंगे बिल्कुल। तो ट्रैफिक में आने जाने में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, हम हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब से बात करेंगे, और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। सारी चीज़ें बतानी हैं हमको इस घंटे, ठीक है ना। तो कहीं जाइएगा मत, आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल एक गाना एंजॉय कीजिए, उसके बाद वापस मिलते हैं। स्टेडियम विद 100.7 FM रेनबो।

0: जी हाँ, 6:15 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में। मैं हूँ शादाब, आप सभी के साथ प्रोग्राम चल रहा है शाम अवध, और एक के बाद एक गाने आप सभी तक पहुँचेंगे, और इसके बाद तो आपका फेवरेट प्रोग्राम, यस हमारा भी उतना ही फेवरेट है जितना आपका है, क्योंकि आपके मनपसंद गाने बजते हैं उसमें, यहाँ तो मेरे मनपसंद बज रहे हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो बात कर लेंगे भाई कौन से लोगों की। हाँ, हमारे जितने भी लोग इम्तिहान देने हमारे शहर आए हुए हैं उनके लिए खास चीज़ है जो हमारे सारे जितने भी परीक्षार्थी हैं उनके लिए लागू हुई है और यूपी गवर्नमेंट की ओर से, कि भाई जितने भी अभ्यर्थी हमारे या किसी भी शहर जाएंगे उनको बस में किराया आधा देना है। जी हाँ, 50% छूट आपको दी गई है अगले 3 दिनों के लिए। तो अगले 3 दिन अगर आप सफ़र करते हैं और अगर आप परीक्षा देने आए हैं, किसी भी शहर आप जा रहे हैं, चाहे वो लखनऊ हो या कहीं और भी अगर आप जा रहे हैं, तो आपको अपना एडमिट कार्ड सिर्फ बस में दिखाना है, और वो जो टिकट होगा आपका जहाँ से आप चढ़े हैं वहाँ से लेके आपके शहर तक का, वो आपको 50% ऑफ में मिलेगा। क्या बात है, क्या फायदेमंद बात हुई है भाई। तो अगर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, लगभग 9.64 लाख अभ्यर्थी पहले दिन देंगे परीक्षा, ठीक है ना। तो ये पहले दिन की आज की परीक्षा थी, फिर कल भी है और परसों भी है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आम नागरिकों को भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी 6 बज रहा है, जब इतने सारे परीक्षार्थी जो शहर आए हुए हैं वो छूटेंगे तो कई जगहों पर बहुत भीड़ होगी, मतलब जैसे बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन। तो अगर आप आगे पीछे करके निकलेंगे, अगर आपको बहुत ज़रूरी ना हो तो इस वक्त ना निकलें, तो थोड़ी भीड़ कम भी हो सकती है, थोड़ा आसपास जा करके सफ़र कर लीजिए, ठीक है ना, चलेगा। तो चलिए एक और गाना, और इसके बाद बताएंगे कि भाई और क्या क्या चीज़ें हो रही शहर में, कहीं जाइएगा, स्टे ट्यून। उससे पहले एक छोटा सा एड ब्रेक के बाद गाना सुनते हैं।
1: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
2: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
1: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
2: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

जी हाँ, 6:01 इस मिनट हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में। शामिल चल रहा प्रोग्राम, मैं हूँ शादाब आप सभी के साथ। और अवध की जब शाम हो जाती है तो फिर आपको पता है ना यार, वैसे तो फिलहाल गरम गरम हवाएं चल रही हैं और गरम मौसम में आप ये भी नहीं कह सकते कि यार अवध की शाम बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे मौसम में तो बस घर पे ही रहना ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप के लिए खबर है, जो लोग स्कूलों में शिक्षक हैं उनके लिए, और ये अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र के लिए जो लोग चाहते हैं कि भाई उनको अपना आसपास का जनपद मिल जाए और वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं, तो उसके लिए आवेदन 20 तारीख तक ओपन कर दिए गए हैं। तो जो परिषदीय स्कूल हैं उनके जो शिक्षक हैं उनके लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने जो ये तैयारियां हैं वो तेज़ कर दी हैं, और आपको

बीएसए कार्यालय जाना होगा, वहाँ 20 तारीख तक आवेदन करने होंगे अगर आपको अपना ट्रांसफर जो है उसको करवाना है। सो ये आवेदन आप कर सकते हैं, ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा अगर जानना है कि कैसे कौन से फॉर्म को फिल करना है, उसके लिए आपको बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए के ऑफिस में ही विजिट करना पड़ेगा। बस तारीख आप जान लीजिए कि 20 तारीख है आपके पास, 20 तारीख से पहले आपको ये काम करना है। तो अगर आप करना चाहते हैं और आप शिक्षक हैं तो आपके लिए मौका है, जल्दी कीजिए। फिलहाल अगले गाने की ओर चलें और गाने से हम आपको जोड़ते हैं, ये लीजिए एक और गाना।

जी हाँ, शाम में प्रोग्राम चल रहा है। मैं हूँ शहदाब आप सभी के साथ। और एक और जो खबर है वो है हमारे CBSE के बच्चों के लिए। हाँ, वैसे तो खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर आप चाह रहे थे कि जो वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन की जो तारीख थी वो थी 6 जून लास्ट तक, ठीक है ना। तो कुछ बच्चों का कहना था कि भाई हमारे जो भी सबमिशन है वो तकनीकी समस्याओं के कारण, यानी कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से हम सबमिट नहीं कर पाए, तो 6 जून जो लास्ट डेट थी वो निकल गई थी। तो CBSE बोर्ड ने ये डिसाइड किया

था कि हम एक दिन और बढ़ाएंगे, तो उन्होंने 6 की बजाय 7 जून तक उन्होंने ये मौका दिया था कि भाई जिनको भी वेरिफिकेशन और री एवेलुएशन करवाना है वो करवा लें। तो अभी बच्चों ने एक और मौका सोचा कि अगर एक दिन और बढ़ जाएगा तो हम और लोग ये कर लेंगे कि हम सबमिट कर देंगे उस फॉर्म कि हमें रिवैल्यूएशन करवाना है और वेरिफिकेशन करवाना है। तो CBSE ने साफ इनकार कर दिया है कि अब कोई तारीख नहीं बढ़ेगी, यानी 7 से 8 जून नहीं होगी। सो फिलहाल कल लास्ट डेट थी जिन्होंने भी री इवेलुएशन और वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कर दिया अपना फॉर्म और अप्लाई कर दिया है, उनकी कॉपियां हो जाएंगी। बाकी जिन्होंने नहीं किया है या किसी तकनीकी वजह से नहीं हो पाया है उनका सबमिशन उनके फॉर्म का, तो माफ़ी चाहेंगे, अब नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि अब वेरिफिकेशन और री इवेलुएशन की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी, ऐसा बोला है CBSE बोर्ड ने। तो ये छात्रों के लिए थोड़ी निराशाजनक खबर है, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ पर आशा है वहीं थोड़ी सी निराशा आएगी। अगर आपने एग्ज़ाम अच्छे किए तो ऑब्वियसली आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, नहीं तो री इवेलुएशन और वेरिफिकेशन की वैसे ज़रूरत होती नहीं, लेकिन है तो फिर ज़रूर करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मौका भी दिया है बोर्ड ने। फिलहाल अगला गाना आप सभी के लिए रेडियो सिटी पर।

0: ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें। चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल।

जी हाँ बिल्कुल, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, 6:40 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में। घड़ी मिला लीजिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई आपको अगर कहीं जाना है, कहीं आना है तो प्लीज कहीं लेट मत होइएगा। और जाने आने की मैंने बात की है तो भाई प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि 3 से 5 आज एग्जाम था, वो एग्जाम सिपाही भर्ती के लिए था, तो बहुत ढेर सारे परीक्षार्थी निकले हुए हैं अपने एग्जाम को खत्म करके, तो 1-2 घंटा तो लगेगा, मतलब भाई तुरंत तो नहीं निकल जाएंगे तो शहर से, तो अगर अपने वापस जगह पर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो कुछ स्थानों पर भीड़ काफ़ी हो सकती है, जैसे कि बस अड्डे, रेलवे स्टेशन। अगर आप उस रास्ते से निकल रहे हैं तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। अगर आप उस जगह से कोई बस या ट्रेन लेना चाहते हैं तो अगर थोड़ा सा टाइम लेकर के जाएंगे, अगर आपकी टाइम उसी टाइम पे ट्रेन या बस नहीं है तो आप बच जाएंगे काफ़ी चीज़ों से, यानी काफ़ी जाम से बच जाएंगे, ठीक है ना। जाम वैसे शहर में आपको पता है किन किन मुख्य चौराहों पर लगता है, मुझे नाम लेने की ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि आपको अवॉइड करना है। मोस्टली लोग अवॉइड कर भी देते हैं उन चौराहों को, जैसे वो कमता चौराहा है, बिल्कुल अवॉइड करते हैं, जिनको नहीं जाना वो उस चौराहे से शहीद पथ बिल्कुल नहीं जाते हैं, और नहरिया चौराहा जिस पर भी जाम लगता है काफ़ी, तो डाइवर्जेंस है काफ़ी जगहों पर, स्मूथ ट्रैफिक चलता है, वो पूरी जिम्मेदारी हमारी भी होती है। और कई बार जो सर्कल बना दिए जाते हैं राउंड करके घूम के आने में, कई लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आते, कई लोगों को बहुत पसंद आते हैं, मेरे जैसे लोगों को तो बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी दूरी जा करके वापस आ जाना उतना बुरा नहीं लगता है जितना सिग्नल पे 15 मिनट या एटलीस्ट 10 मिनट तो खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि अगर बड़े सिग्नल्स की बात करें तो आपको खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है। बड़े बड़े चौराहों पर जो डाइवर्जेंस किए गए हैं वो बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम बच जाता है अगर मैं उन जगहों से निकलता हूँ। मेरी गाड़ी मूविंग रहती है, आप ये ध्यान देते हो कि आपकी गाड़ी चलती रहती है, खड़ी नहीं होती है, तो उसका फ़ायदा है आपको, चलते हुए कम टाइम में आप दूसरी जगह पहुँच जाएंगे। चलिए एक गाने के बाद वापस आएंगे, बताएंगे आपको कि भाई कहाँ कहाँ पर जो परीक्षाएं हैं, आपने फॉर्म डाले थे तो उनकी परीक्षाएं कब कब होने वाली हैं और कहाँ पर आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो ये चीज़ें आपको बता देंगे। कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। ये लीजिए एक और गाना आप सभी के लिए आपके रेडियो सेट्स पर।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
4: जी हाँ बिल्कुल, आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ की 100.7 FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है शाम अवध और मैंने बहुत ढेर सारी आपको जानकारियां दी। मुझे उम्मीद है कि आपके वो काम आई होंगी, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां जो आपके काम बेशक आ सकती हैं उन लोगों के जो इससे जुड़े हुए हैं। जैसे अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय से कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं तो कई कोर्सों की परीक्षाओं का जो समय है वो जारी कर दिया गया है।

पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग के दूसरे सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो 16 से 20 जून तक होंगी। वहीं एमए ए ड्राइंग और पेंटिंग के दूसरे सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो 16 से 20 जून और चौथे सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो 17 से 19 जून को होंगी। अगर आपने शिक्षक भर्ती का जो फॉर्म है वो फिल किया हुआ है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय का ललित कला विषय के लिए सहायक प्रोफेसर के पदों की, तो उसके लिए जो लिखित परीक्षा है वो 17 जून को तय की गई है और ये दोपहर 3 से शाम 4 बजे तक ही रहेगी। ठीक है, सो आप प्लीज़ जो भी लोग अभ्यर्थी हैं उसके वो जाएंगे, और इसका जो प्रवेश पत्र है वो 12 जून से आप वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक और गाना आप सभी के लिए रेडियो सेट्स पर लाते हैं और फिर और एक और न्यूज़ आपको बताते हैं। स्टे ट्यून्ड।

वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक और गाना आप सभी के लिए रेडियो सेट्स पर लाते हैं और फिर और एक और न्यूज आपको बताते हैं। स्टे ट्यून्ड।

आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है, अब 17 जून कर दी गई है। तो अभ्यर्थी जो भी चाहते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म मिल जाए और ऑनलाइन आवेदन हो जाए तो वो 17 जून तक कर सकते हैं, से ये आपके पास मौका है। और इसके अलावा और ज़्यादा डिटेल के लिए उनकी साइट पे जाना पड़ेगा। शामिल प्रोग्राम में मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त और मिलते हैं हेलो एफएम में, जो आपका फेवरेट, हमारा फेवरेट, आपके पसंद के गाने, आपकी बातें सब होंगे रेडियो पर। हम करेंगे बातें, आप करेंगे कॉल, एक गाना मेरी पसंद का, अगले सारे गाने आपकी पसंद के, ठीक है ना। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

यकीन जानिए इनकी आवाज बेहद खूबसूरत है। ये हैं अरिजीत सिंह, इनकी सिंपलिसिटी तो और भी ज्यादा खूबसूरत है जी। 6:54 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में, आप सुन रहे हैं 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की। मैं हूं शादाब, आप सभी के साथ प्रोग्राम शाम वक्त को यहीं पर करते हैं वाइंड अप। जाते जाते एक और न्यूज लेकर जाएंगे जो भी हमारे BBAU के प्रस्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन

0: नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। अब सुनिए यूपी की टॉप 10 न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग से मिलने वाली सटीक और विश्वसनीय जानकारी से जनधन हानि के मामलों में कमी आई है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम में कहा कि पिछले 12 सालों में मौसम विभाग ने इतने रडार और इतने उपकरणों की स्थापना की है जितने पिछले 65 सालों में स्थापित नहीं हुए। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों के समग्र विकास से जुड़ी सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत बने मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी शहरों जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2026 की पहले दिन की लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। ये परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में आज से 10 जून तक आयोजित की जा रही है। रायबरेली के कृषकों एवं आम निर्यातकों को बागवानी से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए अधिकारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। एपीडा के क्षेत्रीय अधिकारी आलोक मिश्र द्वारा कृषकों को हॉर्टिनेट पर पंजीकरण प्रक्रिया, निर्यात के तरीके आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। अयोध्या में परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने आज आरटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को 3 दिन के भीतर सभी कमियों को दूर कर मुख्यालय को लिखित रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने 5 नए एकीकृत आयुष चिकित्सालय और महाविद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया है। ये आयुष चिकित्सालय और महाविद्यालय गोंडा, मिर्जापुर, मेरठ, आगरा और बस्ती मंडल में स्थापित किए जाएंगे। मत्स्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सेक्टर की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व्यक्ति विभागीय पोर्टल पर 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने, जबकि 10 जून से 14 जून तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं बारिश का अनुमान जताया है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित होगा। तब तक सुनते रहिए FM रेनबो।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samrit Bharat. Join Indian Navy.
3: 100.7 FM रेनबो।
0: जी हाँ, एक बार फिर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ शादाब आप सभी के साथ। 7:04 हो चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में और ये वक्त ये कहता है कि भाई हेलो हेलो कर लो, हेलो FM में। बिना कुछ कहे इतनी लाइनों पर फ़ोन आ जाते हैं कि मैं बिना कुछ बोले चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी लोगों से बात कर ली जाए और उनके गानों की ज़रा फरमाइश भी जान ली जाए।

0: तो सबसे पहले जान लेते हैं, हेलो कौन है? हेलो।
1: बार बार दिल ये आए,
0: अरे
1: बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरे है आरे रो।
0: मेरा तो बर्थडे नहीं है।
1: बर्थडे टू यू।
0: वैसे ही किसके लिए?
1: बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आकाशवाणी।
0: अरे वाह, अरे अरे अरे,
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको और आपके टीम को, पूरे देशवासियों को।
0: जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी उतनी ही बधाई जितनी हमारे पूरे परिवार को है और आप सभी श्रोताओं को है। बहुत बहुत धन्यवाद। लबो लो आप, लास्ट में आपने बताया, मैं तो सोच रहा हूँ मेरे लिए गा रहे क्या, मैं तो खुश हो गया था। लेकिन मैं खुशी
1: अप्रैल 2020 को बात हुई थी।
0: कितने कितने कब हुई थी?
1: 29 अप्रैल।
0: 29 अप्रैल को। अरे वाह, क्या बात है। अपना नाम बताइए।
1: सर मैं सत्यम कुमार बात कर रहा हूँ।
0: सत्यम
1: जी,
0: क्या करते हैं सत्यम भाई आप?
1: सर मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो इसीलिए मतलब रेडियो
0: सुनते रहते हैं। अरे वाह वाह, नहीं बहुत अच्छी बात है। सत्यम जी, आप हमारे रेगुलर श्रोता हैं और हमारे साथ जुड़े रहते हैं। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे और किसी?
1: सर अगर गाना आप सुनवा देते बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुमको, तो ज्यादा अच्छा रहता।
0: अच्छा,
1: नाम भी गाना चाहूंगा सर।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए
1: सर। आपकी पूरी टीम,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: पूरे भारत देश में जितने लोग सुन रहे हैं एफएम रेनबो, और सीतापुर से समाप्त परवीन अंसारी, लखीमपुर से हैं साहिबा अंसारी, और लखनऊ से हैं बबलू यादव, बाराबंकी से हैं बाबू अंसारी भाई और फैज अंसारी भाई, उन्नाव से हैं दादा जो कॉल करते हैं श्री प्रकाश दादा।
0: अरे वाह,
1: इनको मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ सर।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया और साथ ही साथ इतनी प्यारी बधाई दी हमें, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। तो थे हमारे साथ सत्यम, और देखते हैं हमारे साथ एक ऑनलाइन पे कौन जुड़ रहा है। हेलो, इन्होंने तो काट दिया फोन ही। मैंने बोला था लाइन पे रहिएगा। फिलहाल जिनको भी, जिनका भी कॉल लगता है, मैं उनको लाइन पर लेकर के बात करता हूँ। अगर सत्यम जी ने रिक्वेस्ट किया तो चलिए पहले गाना सुन लेते हैं। बधाई हो बधाई।

0: जी हाँ बिल्कुल, बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुमको, और आज हम सबको भी बधाई, जितना हमारा है आकाशवाणी उतना ही आपका भी है और हम सबका भी है। फिलहाल हेलो एफएम पर है, आप हैं शादाब के साथ, और शादाब आप सभी को कहता है कि भाई कॉल करो, इतने लोगों ने कॉल की हुई है, जिनकी कॉल लग गई है उनसे हम बातें भी करेंगे, उनके फेवरेट सॉन्ग भी हम प्ले करेंगे, कोशिश पूरी रहेगी। लाइन पर कौन है? हेलो।
1: हेलो, हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहा है? आप सेलेक्ट हो गए हैं, कौन बनेगा?
1: सर, मैं राम प्रसाद, गांव मरगी जिला हरदोई से।
0: राम प्रसाद कहां से?
1: हरदोई से।
0: हरदोई से, बहुत बढ़िया। राम प्रसाद जी कैसे हैं आप?
1: हम अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया, गर्मी का आनंद ले रहे हैं?
1: जर से गर्मी का आनंद ले रहे हैं।
0: बहुत अच्छा, क्या करते हैं राम प्रसाद जी आप?
1: खेती करता हूँ।
0: खेती करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी फसल आप उगाते हैं?
1: गन्ने की।
0: गन्ने की, हाँ तराई, उधर उधर गन्ने की ज्यादा होती है मुझे लगता
1: है, लखीमपुर।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए राम प्रसाद जी बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: फिल्म का गाना सत्यम शिवम सुंदरम।
0: अच्छा, गाने का नाम?
1: जसोमति मैया से बोले रंग लाला।
0: एक बार फिर से बोलेंगे?
1: जसोमति मैया से बोले रंग लाला।

0: से बोले नंदला। नहीं मैं नहीं गाऊंगा, जिस हिसाब से मेरी आवाज है ना उसमें तो गाने लायक नहीं बनता। ठीक है, तो ये फिल्म का नाम है?
1: सुंदरम। नहीं
0: बिल्कुल, चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। डेडिकेट करना चाहेंगे किसी को?
1: नहीं सबको, सुनने वालों को,
0: सभी सुनने वालों को।
1: आपको भी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे किया डेडिकेट। शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद
0: नाम
1: धन्यवाद।
0: प्रसाद जी, धन्यवाद। ये थे हमारे पहले कॉलर, एक और कॉलर ले लेते हैं। हेलो, कौन है लाइन पर? हेलो।
2: दिल से अपने कभी खोने न देंगे,
0: वाह
2: दिल की
0: वाह
2: दुनिया में कभी शाम होने न देंगे।
0: वाह वाह,
2: दिल से अपने कभी खोने न देंगे, दिल की दुनिया में कभी शाम होने न देंगे। मोहब्बत का इल्जाम अपने सर पर ले लेंगे, मोहब्बत का इल्जाम अपने सर पर ले लेंगे। अरे यार तुझे बदनाम होने न देंगे,
0: वाह,
2: अरे यार
0: क्या
2: तुझे बदनाम होने न देंगे।
0: क्या बात है, क्या शानदार लाइन है।
2: अस्सलाम
0: वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है, कहां से बात कर रहा है, जरा बता दें। हेलो,
2: वालेकुम, परवीन अंसारी बात कर रहे हैं। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार सर। और बताइए आप कैसे हैं।
0: बहुत बढ़िया हूं शमा परवीन।
2: जी
0: क्या बात है शमा परवीन जी, इतनी खूबसूरत लाइनें आपने कहां से मतलब देखी या लिखी या क्या की, बताइए।
2: बस आप लोगों के प्यार में, आप लोगों की मोहब्बत में।
0: जी, बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार इसी तरह एफएम के साथ जुड़ा रहे, हम सभी के साथ जुड़ा रहे, हम तो यही चाहते
2: आज
0: हैं।
2: हमने सर काफी लेट अपना रेडियो ऑन किया, 6 बजे के टाइम, तब
0: जी
2: देखा
0: जी
2: क्या शादाब कर आए।
0: अरे बहुत शुक्रिया, मैं तो बस आज
2: लेकिन
0: यहाँ।
2: आपने काफी अच्छा प्रोग्राम किया है, काफी अच्छे सॉन्ग चलाए हैं आपको।
0: बहुत शुक्रिया आपका, आपको पसंद आया ये हमें अच्छा लगा। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी आप शमा परवीन जी?
2: गाना सुनेंगे
0: कोई
2: अब
0: भाई, एक
2: भूल
0: गाना
2: गए।
0: सुना रहे, कोई बात नहीं, एक गाना हम सुना रहे, वो गाना भी आप डेडिकेट कर दीजिए, इससे पहले रामप्रसाद जी थे उन।
2: हाँ वो बात है, डेडिकेट कर दे, कोई सा सुना देना।
0: हाँ बिल्कुल, आप बताइए कौन सा गाना।
2: तो
0: हाँ
2: लगाओ
0: मतलब
2: प्रोग्राम,
0: डेडिकेट,
2: हेलो एफएम कितना अच्छा आप कर रहे हैं, एक साथ दो दो कॉल ले रहे हैं।
0: हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग
2: अब
0: जुड़
2: किसी
0: सके,
2: लिसनर को शिकायत नहीं होगी।
0: हम कोशिश करेंगे कि लोगों से कोई शिकायत ना रहे। आप जल्दी से बताइए किसको किसको डेडिकेट करना चाहती हैं सॉन्ग, जो अगला सॉन्ग प्ले होने
2: सबसे
0: वाला।
2: पहले आपको, फिर
0: बहुत शुक्रिया।
2: सत्यम कुमार भाई हैं और रोशनी रावत हैं जो वहाँ चंडीगढ़ से सुन रही हैं,
0: अच्छा जी
2: और
0: जी
2: वकील अहमद भाई, मोहम्मद आसिफ भाई, गुलाब साहबी, साहब अंसारी, महक अंसारी, रिंकी पिंकी, आरजे पूनम और मोहम्मद फैज भाई और जितने सुन रहे हैं उन सभी सुनने वालों को। ओके
0: बहुत बढ़िया, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू हमें कॉल करने के लिए, सभी को डेडिकेट
2: अल्लाह
0: करते हैं।
2: हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। थे ये थे शमा परवीन। वैसे मैं लगातार कॉल एक के बाद एक इसलिए ले रहा हूँ कि बात तो ज़्यादा लोगों से हो सकती है लेकिन गाना किसी एक का ही प्ले हो सकता है, तो ये चॉइस मेरे ऊपर रहेगी। नहीं, ये चॉइस भी आपके ऊपर रहेगी, कोशिश करेंगे। वैसे राम प्रसाद जी ने एक गाने की फरमाइश की थी, वो गाना प्ले करते हैं, साथ ही साथ शमा परवीन ने जो बोला कि भाई उसी गाने में हम डेडिकेट कर दे सबको, तो भाई ये दोनों का मिक्स गाना आप सभी के लिए आपके रेडियो सेट्स पर ये लीजिए।

0: जी हाँ बिल्कुल, 7:15 इवन 16 मिनट होने चाह रहे हैं स्टूडियो के क्लॉक में, और देखते हैं अगले कॉलर हमारे साथ कौन जुड़े हैं। यस हेलो।
1: हेलो
0: जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से?
1: मिंटू तिवारी, ग्राम भकरना, तहसील खागे, जिला फतेहपुर से।
0: क्या बात है मिंटू तिवारी जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं सर।
0: बढ़िया लग रहा है आज कल गर्मी?
1: आज 10-12 दिन में फोन लगा।
0: नहीं अच्छी चीज है, मतलब 10-12 दिन में आप अगर कोई चीज रेगुलर करेंगे तो बोर हो जाएंगे ना, इसलिए 10-12 दिन में करें तो एकदम फ्रेशनेस आती है, अच्छी चीज लगती है ना। जी
1: एक बात बोले, गाना हम बता दे, गाना हमारा समाचार के बाद सुनाना क्योंकि हम नहीं
0: जी जी जी आप गाना बता दीजिए, चलिए बताइए
1: गाना हमको। दलाल मूवी चला दीजिए, मर गए फोगट में, ऐसा हमको तो लियो बचा, ऐसा तीर चलो मेरे दिल पर जिस भी मारता है।
0: अच्छा ठीक है, मर गए फोकट में।
1: हाँ जी, हम किसी नाम ले ले डेडिकेशन
0: जल्दी से।
1: हाँ पहले तो हो गए मेरे प्रेम कुमार सिसोदिया जी, हो गए भाई, हो गए सीतापुर से, और उनके छोटे भाई हो गए, और मेरे बड़े भाई विनोद तिवारी, प्रमेश तिवारी, और आप हो गए, और जितने लोग सुन रहे हैं सभी के लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
0: थैंक यू।
1: प्रभाकर तिवारी जी होगा रसूलपुर गुलराहा से, ये गाना विस्तार समाचार के बाद ही सुना।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद नहीं चाहेंगे कि गाना हम काटे, इसलिए
1: क्योंकि ये मतलब समाचार के बाद ही हमारे इधर सुनाई देता है।
0: जी जी जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका गाना समाचार के बाद। बहुत शुक्रिया हमें मिंटू तिवारी जी कॉल करने के लिए, धन्यवाद।
1: भगवान जी कितने लोग सुन रहे हैं सभी के लिए,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं अगले कॉलर भी कौन हमारे साथ जुड़े। हेलो।
2: हेलो
0: जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से?
2: संगीता दशरथ बंगला बजा से।
0: एक बार नाम फिर से बताएं दोस्त।
2: संगीता दशरथ।
0: अच्छा ओके, संगीता देशराज, सही सुना मैंने?
2: संगीता दशरथ।
0: संगीता देशराज, मैं सही सुन रहा हूँ ना?
2: जी सर।
0: अच्छा बताइए संगीता, आप क्या करते हैं, क्या करती हैं?
2: हाउस वाइफ सर।
0: अच्छा बहुत कम बोलती है एकदम मतलब कट टू कट जवाब देती है
2: जी, ज्यादा आदत नहीं ना।
0: अच्छा कोई बात नहीं, अच्छी चीज है। गाना कौन सा सुनना पसंद करेंगी? या
2: जी गाना है मेरा तकदीर फायर का है, परदेसिया इतना बता सजना तेरी कौन हूँ मैं।
0: अच्छा परदेसिया
2: इतना बता,
0: इतना बता
2: तेरी कौन।
0: ठीक है तो मैं न्यूज के बाद आपके गाने की जो फरमाइश है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप डेडिकेट अगर करना चाहती हैं तो जल्दी से कर दीजिए
2: जी सर आपको।
0: बहुत शुक्रिया संगीता जी,
2: जितने भी श्रोता सुन रहे हैं सभी श्रोताओं को
0: बहुत बहुत शुक्रिया। अब लगा कि आप बोली हैं कुछ, मुझे भी सुनाई दिया और श्रोताओं को भी बहुत धन्यवाद।
2: अच्छा लग रहा
0: है, थैंक यू सो मच। आपका कॉल पहली बार लगा है या इससे पहले लग चुका है?
2: लग चुकी है।
0: अच्छा लग चुकी है, थैंक यू। मेरे साथ मेरे से पहली बार शायद आपकी बात हो रही है, हाँ तो इसी वजह से मुझे लगा ऐसा।
2: आपने सोचा मेरी कॉल काट गई क्या, होल्ड पे रख दिया?
0: नहीं नहीं होल्ड पे रखे क्योंकि हमें बात करनी रहती है, तो हम एक नहीं दो दो कॉलर से बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया संगीता जी हमें कॉल करने के लिए, आपका बंगला बाजार से, थैंक यू। सो संगीता जी की जो फरमाइश है और जो मिंटू तिवारी जी की फरमाइश है उसे मैंने लाइन अप कर लिया है, लेकिन अभी हमारे प्रादेशिक समाचारों का जो टाइम है वो हो चुका है, यानी 7:20 पे हमारे प्रादेशिक समाचार आप सभी के बीच आएंगे, उन्हें सुनिए और हमारे साथ हेलो एफएम में अपना साथ बनाए रखिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि गाने आपके पसंद के, बातें आपकी पसंद की, और रेडियो भी आप ही के पसंद का है, ठीक है ना।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण रहा पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएगा ये केंद्र। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चलाई 4 स्पेशल ट्रेनें। और लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो नाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
1: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों से प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित होने से प्रदेश को काफी लाभ मिलेगा।
3: मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है? हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था

0: खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा। यहाँ पे अब रीजनल सेंटर मेट्रोलॉजी का प्रारंभ होगा तो उसका एक बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होगा।
1: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12 सालों में मौसम विभाग ने इतने राडार और उपकरणों की स्थापना की है जितने पिछले 65 सालों में स्थापित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले सिर्फ 14 राडार थे, लेकिन अब इनकी संख्या 150 से अधिक हो गई है।
2: जितनी प्रगति गत 12 वर्षों में हुई है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इतनी उससे पहले के शायद 65 वर्षों में ना हो पाई। सन 2014 तक देश भर में केवल और केवल 17 वेदर रडार्स थे और कई एक ऐसे प्रदेश थे जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, जहां एक भी रडार नहीं था। आज वो 17 रडार बढ़कर के 50 हो गए हैं और मिशन मौसम के तहत 50 और जुड़ने वाले हैं, यानी अगले 2 साल में हम 100 रडार तक पहुंचेंगे।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। ये परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में आज से 10 जून तक आयोजित की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 परीक्षा दो पालियों में आज राज्य के 1183 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। केंद्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए स्थायी मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय किराए में 50% की छूट प्रदान की जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 10 जून तक गोरखपुर से लखनऊ के बीच 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
4: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक के दुबेपुर बसारी ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत बने मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी शहरों जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि गांवों की प्रतिभाएं निरखकर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
5: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।

0: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
2: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में मौसम शुष्क रहने, जबकि 10 जून से 14 जून तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण रहा पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएगा ये केंद्र। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चलाई 4 स्पेशल ट्रेनें। और लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो नाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: सारेगा पदा निदा पगरेगा मगरेगा सागा।
7: नमस्कार, मैं हूँ अनूप जलोटा। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो कानपुर।
6: पानी रे मा पदा पगरे मगरे गरे सनिदा रे।
5: इसे 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: हमको लियो बचाए।

0: एक जन्म की बात छोड़ तू देंगे सातों जन्म निभाए।
1: फिलहाल ये गाना आप सभी ने सुना अपने रेडियो सेट्स पर 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की। मैं हूं शादाब, आप सभी के साथ आपके फेवरेट गाने आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन पर सुनाते हैं हम। और बस आपको करना क्या है, आपको कॉल लगाना है, नंबर आपको पता है 0522 2238 852 2238 845। इस पर कौन कौन कॉल मिलाकर हमारे साथ जुड़ा है बात कर लेते हैं पहले। हेलो हेलो,
2: नमस्ते सर।
1: नमस्ते, किसकी आवाज है ये?
2: रोहिणी, ग्राम प्रभाजीरा, जिला हरदोई से बोल रही
1: हूं। रोहिणी, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। रोहिणी, रोहिणी आप इधर सुन रही हैं या रेडियो सुन रही हैं? पहले कॉल पे बात कर लेते हैं फिर आप रेडियो सुन लीजिएगा।
2: सर रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं।
1: अच्छा, मेरी आवाज आपको मिल रही है लगातार?
2: हाँ आवाज मिल रही
1: है
2: सर।
1: रोहिणी क्या करती हैं आप?
2: सर मैं पढ़ाई करती हूँ।
1: किस क्लास में हैं आप?
2: टेंथ में थे, अब 11th में आ गए।
1: क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। टेंथ में थी आप, 11th में आ गई हैं। रेडियो सुनने का टाइम मिल जाता है कभी कभी?
2: हाँ सर रेडियो रोज सुनते हैं पढ़ाई करते समय।
1: अरे वाह, ये एक ऐसा मीडियम है जिसकी तरफ आप को स्पेशली ध्यान नहीं देना है, वो अपने आप आपका ध्यान खींच लेगा ना। चलिए, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
2: कोई भी अपनी पसंद का गाना सुना दीजिए।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया।
2: थोड़े बात कर लीजिए।
1: अच्छा बात करा दीजिए जल्दी से।
2: छोटी सी है जिंदगी खुशी से जियो, छोटी सी है जिंदगी खुशी से जियो, गम में क्या रखा है मजे सर उठा के जियो, अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो, अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अपने लिए नहीं अपनों के लिए, नहीं अपने लिए भी जियो और दोनों सबके लिए जियो। क्या नाम है आपका? आपकी आवाज कट रही, क्या नाम है आपका? फिर से एक बार बोलिए नाम। मोहिनी, राइट? क्या बात है, मोहिनी रोहिणी, क्या दोनों सिस्टर
2: ठीक है?
1: बहुत बढ़िया हूँ मैं, बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे।
2: हाँ सर जी बहुत अच्छी।
1: बहुत शुक्रिया, आप लोग ऑन एयर रेडियो पे बात कर रहे हैं और सभी को सुनाई दे रहे हैं, इससे और अच्छे हो गए होंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। तो जो गाना आगे प्ले करने वाले हैं वो किसी को डेडिकेट करना है आपको? बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, रोहिणी एंड मोहिनी, शुक्रिया। सो ये थी हमारे साथ रोहिणी और मोहिनी। अब हमारे साथ अगले कॉलर कौन है? हेलो
3: हेलो, नमस्ते सर।
1: सर नमस्ते, कैसे हैं, कौन?
3: बढ़िया है सर, हम किशोर कुमार बोल रहे हैं, सीतापुर से टड़वा चिलौला से बोल रहे हैं।
1: किशोर कुमार सीतापुर से, पिछला कॉल भी सीतापुर से था, इधर लग रहा है सीतापुर वालों की लाइन बहुत तेज चल रही है। किशोर जी क्या करते हैं आप?
3: जी हमारी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान है सर।
1: अरे वाह, साइकिल रिपेयरिंग की दुकान है, कितना टाइम से आप कर रहे हैं, मतलब लाइक सालों हो गए?
3: हाँ सालों हो गए, 30 साल हो गए।
1: रेडियो बजता रहता होगा साथ में?
3: जी जी रेडियो,
1: आनंद लेते रहते होंगे।
3: एक रेडियो खराब हो जाता है दूसरा रेडियो पे लेते हैं सर।
1: अच्छा कोई बात नहीं, चलिए गाना कौन सा सुनेंगे बताइए किशोर जी।
3: कर्तव्य का गाना है।
1: कौन सा?
3: बाबू तो कर्तव्य।
1: हाँ हाँ,
3: गाना बाबू तो कैसा दिलदार निकला, चोर समझी कि थानेदार निकला।
1: अरे वाह, गाने के बोले एक बार फिर से बताइए।
3: चेला बाबू तो कैसा दिलदार निकला, चोर समझी थी तू थानेदार निकला।
1: अरे वाह क्या बात है, चेला बाबू तो कैसा दिलदार निकला है।
3: जी।
1: तो ये गाना किसको आप डेडिकेट करना चाहेंगे?
3: यहाँ पर हमारे प्रधान दादा बैठे हैं, यहाँ पर मोनू भैया बैठा है, बबलू भैया बैठे हैं यहाँ पर।
1: अच्छा सब बैठे हुए हैं तो सब लोगों को सुनाना चाहेंगे?
3: जी, जी जी,
1: क्या बात है। चलिए ये गाना आपकी पसंद का हम लाते हैं रेडियो सेट पर, आप भी सुनिए साथ ही सभी लोग सुने, और जो इससे पहले कॉलर थे उनको भी ये गाना डेडिकेट, धन्यवाद। तो ये गाना आप सभी के साथ रेडियो सेट्स पर ये लीजिए।

0: यकीन जानिए कि आप लोग ने जो जो गाने अभी तक रिक्वेस्ट किए हैं, कई गाने तो मेरे लिए ऐसे थे कि मेरे लिए फर्स्ट टाइम थे, मैंने कभी सुने नहीं थे। ऐसा हो सकता है यार, जरूरी नहीं कि आपने इतने बड़े लार्ज स्केल पे कोई गाने सुन रखे हो। फिलहाल आप लोगों ने जो गाने अभी तक किए बहुत खूबसूरत है, मुझे भी नई नई चीजें जानने को मिलती है। चलिए एक नए कॉलर को लाइन पर जोड़ते हैं। कौन है? हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार सर, कौन है, कहाँ से?
1: जी मैं जिला रादरेली ग्राम पहाड़ीपुर से रामराज बोल रहा हूँ।
0: रामराज जी?
1: जी
0: रायबरेली जिले से हैं
1: जी।
0: क्या बात है रामराज जी, क्या करते हैं आप?
1: जी हम तो घर पे रहते हैं, बकरी वकरी है, वही चराया करते हैं।
0: अरे वाह, और लगातार सुनते रहते हैं एफएम?
1: जी सुनते रहते हैं, मेल भी हर कार में भेजते हैं।
0: अच्छा, मेल वेल भेज लेते हैं?
1: जी
0: मेल भेजते हैं
1: जी, हर कार सब में संदेश आपके गीत हमारे
0: जी जी जी बहुत बढ़िया,
1: हर कार तुम सुनते हैं।
0: नहीं नहीं अच्छी बात है, आप इसके साथ जुड़े रहे। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: फिल्म क्रोधी का गाना सुनवा दीजिए, चल चमेली बाग में मैं या खिलाऊंगा।
0: अरे वाह, ये गाना सुन के मुझे हंसी आ गई, चल चमेली बाग में।
1: गाना है हमारे जमाने का है।
0: नहीं नहीं बिल्कुल मेरे लिए नया है, मैं जरूर सुनवाऊंगा आपको।
1: जब हमारी उम्र 60 साल की है।
0: 60 साल की आपकी उम्र है?
1: जी
0: हाँ।
1: सुन रहा हूँ सन 80-50।
0: बहुत बढ़िया, मैं बस जस्ट आपके आधे उम्र का हूँ, बस थोड़ा सा ऊपर हूँ।
1: आपके जमाने के गाना है ही नहीं।
0: जी जी जी नहीं नहीं मैं बिल्कुल सुनवाऊंगा आपको रामराज जी। रामराज जी किसी को डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
1: 4 लोग हैं
0: जी, बताइए
1: जी। पप्पू पासीमा जहरगंज, नीरज, मधु, भूरा, बजरंगी काका है, इमरान शेख मिर्जा पहाड़पुर के, रामचरण प्रजापति।
0: बहुत बढ़िया, इन सबको डेडिकेट
1: जी।
0: बहुत धन्यवाद राम जी, रामराज जी हमें कॉल करने के लिए।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार। सो ये थे रामराज जी, और अब देखते हैं अगले कॉलर कौन है। हेलो
2: हेलो,
0: कौन बात कर रहा है, कहाँ से? नमस्ते, थोड़ा तेज बोलेंगे आप। हेलो,
2: मेरा नाम प्रीति है।
0: प्रीति, प्रीति आप बहुत जी,
2: मोई जमुई में से उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, मोई जमुई उत्तर प्रदेश, बहुत दूर से आवाज आ रही, थोड़ा

0: ऐसा करके बोलिए। और बहुत मुझे आपकी उम्र कम लग रही, क्या क्या उम्र है आपकी?
1: 12 साल।
0: 12 साल, क्या बात है। अभी हमने जस्ट सोचिए, अभी हमने एक रामराज जी हैं उनसे बात की, उनकी उम्र थी 60 साल और आपकी उम्र है 12 साल। तो हमारे जो श्रोताओं, जो श्रोता है या लिसनरशिप है ना, वो हर एज ग्रुप में है। अच्छा लगा है मुझे जान के। तो क्या करती हैं प्रीति आप?
1: करते हैं सर, नाइन्थ
0: किस क्लास में है?
1: 9th क्लास।
0: 9th क्लास। और रेडियो भी सुन लेती हैं कभी कभी?
1: रोज
0: रोज सुनते हैं। नहीं, अच्छी बात है। चलिए, टाइम पढ़ाई से निकाल करके रेडियो सुन लेती हैं। कोई गाने की फरमाइश करना चाहेंगी बताइए। हाँ, बहुत लोग कॉल करते ना, इसलिए एक साथ कैसे लग जाएगा। फोन लाइन एक ही है, मतलब दो लाइनें हैं अलग अलग, लगातार कॉल कर रहे हैं लोग। बताइए जल्दी से कौन सा गाना?
1: जूलियट गाना सर।
0: कौन सा?
1: जूलियट।
0: जूलियट।
1: यस,
0: जूलियट गाना। गाने के कुछ और बोल बताएंगी आप?
1: जूलियट जट्टी सॉन्ग।
0: जूलियट जट्टी। चलिए, मैं ये गाना अगर मिल जाता है तो मैं डेफिनेटली आपको सुनाऊंगा। और अगर आप किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं तो जल्दी से नाम ले लीजिए
1: पहले तो सर आपको।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: और सत्यम भाई को।
0: ओके।
1: रिंकी रिंकी को।
0: अरे वाह।
1: और साहिबान सारी, समान सारी।
0: अच्छा, ओके।
1: और सब जितने सुनने वाले हैं सभी को।
0: चलिए, थैंक यू सो मच प्रीति हमें कॉल करने के लिए, धन्यवाद। नमस्ते। तो चलिए, बिना देर किए एक गाना जो आपकी पसंद का आपके रेडियो सेट्स पर।

0: खैर सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर जी की खूबसूरत आवाज में गाना सुना ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो। धड़कन लखनऊ की मैं हूं शादाब, आप सभी के साथ। 7:50 हो चुके हैं स्टूडियो की क्लॉक में। अगले कॉलर कौन है उन्हें लाइन पर ले लेते हैं। हेलो हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन जनाब, कहां से?
1: मोहम्मद राशिद।
0: मोहम्मद राशिद साहब कहां से बात कर रहे हैं, किस शहर से?
1: जिला कौशाम्बी, तहसील सिरासू, पोस्ट टेलीपुर गीता, गांव दौलतपुर कसार।
0: क्या बात है, मैं कौशाम्बी से आपको बुलाऊंगा। कौशाम्बी साहब बात कर रहे हैं
1: जी। शादाब भाई, आपने फोन उठाया, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी हम कितने बार कॉल किया, किसी ने फोन उठाया नहीं।
0: नहीं नहीं नहीं, देखिए कॉल उठाना हमें मतलब हम कॉल उठा के बात ही करेंगे और हमें पता नहीं चल पाता कि किसको कॉल है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं चलेगा तो वो जान
1: बुझ। कितने बार शादाब भाई लगाया हमने, तरन्नुम की और मतलब
0: देखिए मैं फिर एक बार

0: मतलब हम कॉल उठा के बात ही करेंगे और हमें पता नहीं चल पाता कि किसको कॉल है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं चलेगा तो वो जान बुझ
1: कितने बार सादा भाई लगाया हमने तरन्नुम की और मतलब
0: देखिए मैं फिर एक बार बताऊंगा, बार बार बताऊंगा ये चीज कि हम लोग बिल्कुल आरजेस को ये पता नहीं होता कि कॉल
1: यही कहेंगे ना
0: नहीं नहीं नहीं हर किसी का कॉल उठाया जाता है। फिलहाल बताइए क्या करते हैं राशिद जी आप?
1: सादा भाई कुछ नहीं करते, घर पर रहते हैं।
0: अच्छा, घर पर रहते हैं। चलिए, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: लहू के दो रंग।
0: लहू के दो रंग मूवी से?
1: हाँ मूवी है। मुझे पैसा मिला यार, रस्ता मिला, आप खरीदूंगा बंगला गाड़ी
0: ये आपको चाहिए?
1: हाँ असल में क्या ना सादा भाई, मीडियम गाना ज्यादा सुनते ना, जो 19 के गाना बहुत अच्छे रहते हैं।
0: 90s के गाने बहुत अच्छे रहते हैं। किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: हाँ ये हमारे छोटे से भतीजे हैं मोहम्मद अहद, असरा बेगम, और ये जोहा फातमा,
0: अरे
1: और पिंकी रिंकी, और साजिया, और साहिबान सारी, समा परमीन,
0: अरे
1: वारिस अली और वारिस अली, और वकील अंसारी,
0: सभी लोगों को डेडिकेट
1: सुन रहे हैं जी।
0: चलिए बहुत अच्छा,
1: नाम नहीं ध्यान रहता।
0: नहीं नहीं नहीं, आपने सभी लोग को शामिल कर लिया, यही बहुत है। आप बोल दीजिए सभी लोगों के लिए तो सभी शामिल हो गए। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए राशिद जी। गाने को लाइनअप कर लिया है, थोड़ी देर में सुनाता हूँ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: अल्लाह
0: हाफिज़। सो ये थे हमारे राशिद जी। अब देखते हैं अगले कॉलर कौन है। हेलो,
2: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग, कौन बात कर रहा है, कहाँ से?
2: तौहीद मलिहाबाद।
0: तौहीद मलिहाबाद से? यार मलिहाबाद की याद मत दिलाओ, इस टाइम पर दशहरी याद आ रही है। अरे अरे बिल्कुल, मैं अभी गया था हाल ही में हरदोई, तो मैं संडीला मलिहाबाद होते हुए गया था, तो काफी दशहरी लेके आया। मलिहाबाद इज फेमस फॉर दशहरी, आपका जो शहर है कस्बा है बहुत फेमस है। क्या करते हैं तौहीद जी आप?
2: हमारे घर में जरी का काम होता है।
0: जरी का काम होता है
2: जी।
0: बहुत बढ़िया। तो ये मुझे एक चीज जाननी है, ये आप लोग दुनिया भर को आम खिलाते हैं मलिहाबाद वाले, ये मलिहाबाद वाले कितना आम खाते हैं ये बताइए?
2: बहुत
0: खाते हैं
2: जी।
0: मुझे तो वहां से सिर्फ एक्सपोर्ट होते हुए दिखता है, यानी बाहर जाते हुए दिखता है, मुझे लगता नहीं कि वहां पर कोई खाता भी है। खाते हैं?
2: खाते
0: हैं खाते हैं
2: आते हैं, बाहर भी जाते हैं।
0: अच्छा, तो चलिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल टाइम ऐसा हो चुका है तौहीद जी की गाने की फरमाइश लेना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक गाने की फरमाइश ऑलरेडी आ चुकी है, और अगर आपके गाने की भी फरमाइश ली तो दोनों गाने प्ले नहीं हो सकते, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। हाँ, एक गाना है जिनको मैंने लाइनअप कर रखा है, तौहीद जी थे उन्होंने किया था, नहीं नहीं तौहीद जी तो आप हैं, राशिद जी ने किया था। सो उस गाने को आप डेडिकेट करना चाहेंगे किसी को तो बिल्कुल कर दीजिए,
2: सभी के लिए।
0: सभी के लिए बहुत शुक्रिया तौहीद जी हमें कॉल करने के लिए, अच्छा लगा आपने बात की हमसे, थैंक यू। ओ कट गया फोन। सो ये थे तौहीद जी, और जैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैक्सिमम जितने लोगों को मैं ऑन एयर ले पाऊं और उनसे बातें कर पाऊं, लेकिन आज का ये वक्त जो है ये इजाजत नहीं दे रहा है कि आप ज्यादा कॉल लो, बस ये है इतना टाइम दे रहा है कि एक गाना प्ले कर सकता हूँ। हाँ तो इस गाने के साथ आपको छोड़कर जाता हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए इस गाने को। 7:54 हो चुके हैं, लगभग 55 होने वाले हैं। मेरा नाम शादाब है और मैं अब आप लोगों को बाय-बाय बोलता हूँ, आपसे कहता हूँ कि अपना ख्याल रखिए, इस गर्मी में दिन में मत ही निकलिए, अगर बहुत ज़रूरी काम है तो ज़रूर निकलिए, लेकिन अगर अपने आप को बचा सकते हैं कुछ दिन तो बचाइए, क्योंकि कई बार ये होता है ना आपकी नादानी कई बार भारी पड़ जाती है और बहुत बीमार पड़ जाते हैं आप। तो ये मेरी राय है आपके लिए, बाकी मर्जी आपकी है, एंजॉय कीजिए हर दिन को हर पल को। थैंक यू हमें कॉल करने के लिए, जिन्होंने कॉल किया बहुत शुक्रिया। ये गाना आप सभी के लिए आपके रेडियो सेट्स पर।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय

0: राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग से मिलने वाली सटीक और विश्वसनीय जानकारी से न केवल जन धन हानि के मामलों में कमी आई है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12 सालों में मौसम विभाग ने इतने राडार और उपकरणों की स्थापना की है जितने पिछले 65 सालों में स्थापित नहीं हुए। उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सेक्टर की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषादराज बोट सब्सिडी योजना और सघन मत्स्य पालन हेतु एयरनेशन सिस्टम की स्थापना शामिल है। इच्छुक व्यक्ति विभागीय पोर्टल पर 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा पहले दिन दो पालियों में आयोजित की गई। प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन दोनों पालियों में कुल 38,928 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन इनमें से 28,237 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। जनपद में परीक्षा के लिए कुल 44 केंद्र बनाए गए हैं। 10 जून तक चलने वाली इस परीक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं। चंदौली के जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि जनपद में खरीफ फसलों के लिए धान व ढेंचा के बीज और विभिन्न उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी आवश्यकतानुसार ही उर्वरकों की खरीद करें। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारा अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: Entertainment और information रहेगा संग संग.
3: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए.
0: जब छाएगा 100.7 FM Rainbow का सतरंगी रंग.
4: कोई नूर.

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर। फिर रात को फुर्सत के वो पल,
5: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा,
4: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो,
6: धड़कन लखनऊ की।
7: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
8: शाम

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना। कौन आएगा, कैसे आएगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मैं कहूंगा कि चुपके से कोई कहता है शायर नहीं हूं मैं, क्यों असल में हूं वो बजाहिर नहीं हूं मैं। भटका हुआ फिरता है दिल किस ख्याल में, क्या ज्यादा ए वफा का मुसाफिर नहीं हूं मैं, क्या ज्यादा ए वफा का मुसाफिर नहीं हूं मैं। जमशेद हूं आपके साथ, आप शार में 100.7 FM रेनबो के साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुनते रहिए आप शार 100.7 FM रेनबो पर।

0: तू कहीं भी रहे तेरे सर पर इल्जाम तो है, तेरे हाथों की लकीरों में मेरा नाम तो है। और यकीन मानिए जिंदगी में किसी को समझ पाना शायद इतना आसान नहीं जितना हम समझते हैं। कोई भी शख्स हो, कैसा भी शख्स हो, वो अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और हमें पहचानना होता है उसे कि वो हमारे लिए बेहतर है या नहीं। और अक्सर मोहब्बत में भी ऐसा ही होता है, लेकिन जो दिल में बस गए उनका क्या कहें।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

तू कहीं भी रहे सर पर तेरे इल्जाम तो है। सारी दुनिया से अकेले जूझ लेता हूं कभी, और कभी अपने ही साए से भी डर जाता हूं मैं। जिंदगी जब मुझसे

मजबूती की रखती है उम्मीद। फैसले की उस घड़ी में क्यों बिखर जाता हूं मैं, लेकिन हां, ये जो माजी की यादें हैं वो कहीं ना कहीं मजबूती देते हैं, जिंदगी को एक राह देते हैं, एक चाह देते हैं। वो यादें आज भी कुछ ना कुछ कह जाती हैं। जमशेद हूं आपके साथ, आबशार में 100.7 FM रेनबो के साथ।

हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है और वो महक ताउम्र बरकरार रहती है। जिंदगी कब किस मोड़ पर क्या फैसला लेगी, इसका एहसास हम कभी नहीं कर पाते। हम तो बस उसी ओर चलते चले जाते हैं जिस तरफ जिंदगी हमें ले जाती है, और हम जिंदगी के हर फैसले पर यकीन करते हैं आंख बंद कर। लेकिन हां, जिंदगी में कुछ ऐसे भी लोग शामिल होते हैं जो मौसमों की तरह बदल जाते हैं, लेकिन कुछ ताउम्र ता जिंदगी आपका साथ निभाते हैं। यही तो है मोहब्बत का फलसफा। लेकिन जो वक्त के साथ मौसम की तरह बदल जाए उनको आप क्या कहेंगे, और जो साथ निभाए उनको क्या कहेंगे।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुनते रहिए आबशार 100.7 FM रेनबो पर।

कहते हैं मुझसे इश्क का अफसाना चाहिए, और वो अफसाना पूरा होता है या नहीं ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल वक्त ये कह रहा है कि आबशार का वक्त यहीं तक, समाचार संध्या, और उसके बाद फिर होगी मेरी मुलाकात पॉप टाइम में। बहुत खुश हो कि उसने कुछ कहा है, न कह के मुकर जाए तो कहना, बदल जाओगे तुम गम सुन के मेरे, कभी दिल गम से घबराए तो कहना, कभी दिल गम से घबराए तो कहना। होती है मुलाकात अब से कुछ देर के बाद, आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ, जमशेद के साथ।

0: राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के हृतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हृतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थयात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,000,000 रुपए की

अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शारीरिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के

0: तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
1: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
0: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
2: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
4: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
3: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

और इधर झूम झूम कर गाने की बात हो रही है, ढेर सारे मेल आपके हमारे पास आ चुके हैं। और इस समय मेल जो पहला हमारे पास आया है आधा वर्ष है, और ये अजीज अहमद साहब हैं, इन्होंने हमें किया है मेल ग्राम अपोस्ट त्योहार से। आगे आपने लिखा यूपी 34 लिखा हुआ है, और मुझे इंतजार रहता है इस प्रोग्राम का बेसब्री से। सुधांशु जी का मेल आ चुका है हमारे पास, इटौंजा बख्शी का तालाब लखनऊ से आपने मेल किया है। प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा है और स्थापना दिवस की ढेर सारी मुबारकबाद आपने दी है। कई लाइनें लिखी, वक्त थोड़ा सा कम है लेकिन हम दो चार लाइनें जरूर पढ़ेंगे आपकी, कि लखनऊ के नवाबों की ये शान FM रेडियो है सबकी जान, सत्य शिव सुंदरम का नारा आकाशवाणी है सबसे प्यारा, है ना। बहुत अच्छी खूबसूरत सी लाइनें लिखी हैं, किसी और प्रोग्राम में इन पूरी जो लंबी सी लाइन आपने लिखी है उसको शामिल करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। और रणधीर गुप्ता जी का भी मेल आ चुका है, नमस्कार नमस्कार, प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपने ओखला संगम विहार दिल्ली से किया है मेल। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, ये सारे आपने नाम लिखे हैं और साथ साथ लिखा है पॉप टाइम धड़कन लखनऊ की गाने पसंद आ रहे हैं, बेहतरीन प्रस्तुति आपने लिखी है, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ एस शुक्ला जी का भी मेल आ चुका है, और इन्होंने लिखा नमस्ते सर जी, आई एम अनुराधा शुक्ला विलेज गंगापुर, और आपने बहराइच से हमें मेल किया है, पूरी तरह से प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। साथ साथ वकील अहमद साहब की भी मेल आ चुका है, और आपने हमें सीतापुर से मेल किया है, और प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, पॉप टाइम के गाने कुछ अलग तरह के लगे आज आपको। ज्ञान प्रकाश आर्य का भी मेल आ चुका है हमारे पास, वाराणसी से आपने किया है मेल, कहते हैं कि वाराणसी में गर्मी चरम पर है और स्वास्थ्य थोड़ा सा हमारा ख़राब है लेकिन प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं।

और कमल पांडे जी का भी मेल आ चुका है हमारे पास, नसीरपुर जिला सीतापुर से, और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह से प्रोग्राम को एंजॉय करते रहिए तो हमें लगता है कि हमारी जो मेहनत होती है गीतों का चुनना, ये सफल हो जाती है। विनीत कुमार जी का भी मेल आ चुका है, अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से, पॉप टाइम आपको बहुत पसंद आ रहा है और पिछला प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया।

और चलिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी अब तक पहुंचा दें, क्योंकि दिल भी लीजिए दिल दीजिए, लेकिन कुछ चीजें हैं उनको सुनना बिल्कुल मत भूलिए। और प्रोग्राम की जानकारी दे दूं, क्योंकि आप तक पहुंचाना ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आपको बताते चलें, अगर आपको खाने निगलने में कोई परेशानी होती है या खाने या पीते समय बार बार खांसी आती है, तो ये डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। क्या है डिस्फेजिया, इसके कारण और लक्षण और इसके बचाव के बारे में जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार को, यानी 10 जून 2026 को सुबह 11 बजे, जिसमें हमारे साथ रहेंगे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ईएनटी स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रतन जैन, और देंगे आपकी जिज्ञासाओं का सरल और उपयोगी जवाब। तो बस फोन नंबर हम आपको बता दें, हमारे नंबर रहेंगे 0522-2238-845, 0522-2238-852, यानी 0522-223-8845, 0522-223-8852। तो सुनना ना भूलिएगा, नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस पर विशेष कार्यक्रम 100.7 FM रेनबो पर, क्योंकि सही जानकारी बेहतर स्वास्थ्य। आकाशवाणी FM रेनबो आपके हमेशा साथ। Oh my God.

बिल्कुल, दिल लेना दिल देना सौदा खरा खरा, लेकिन बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जो दिल देते हैं, उनको बदले में दिल मिलता है और उनका जो जिंदगी का मकसद होता है वो होता है पूरा। और जिंदगी का जो मकसद पूरा होता है तो कुछ ऐसे ही कहते हैं। नमस्कार, 36 मिनट साथ में कुछ सेकंड्स में जमशेद आपके साथ, आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम पॉप टाइम के साथ।

हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, और ऐसे ही बल्ले बल्ले हो, किसी को कुछ जरूरत होती किसी को कुछ, लेकिन जिनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। फिलहाल रह ले मेरे कोल सिमरन चौधरी की आवाज में ये नया गीत आपके लिए पॉप टाइम में।

तू रेले मेले कोल, ढेर सारी अभी चीजें हैं बाकी आपके लिए, ढेर सारे गीत आपके लिए बाकी, बहुत बढ़िया गीत प्ले हो रहे हैं। ये कहना है किनका? प्रमोद यादव का, जिन्होंने दादानगर कानपुर से किया है मेल, पूरी तरह से प्रोग्राम को कर रहे हैं एंजॉय। और अगला मेल उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। अगला मेल है किसका? अमन नवाब ने कर दिया है मेल। प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, लस्सी पी रहा हूँ बिल्कुल। और आपने हमें संडीला से मेल किया है, एक प्यारा सा फोटो भी आपने भेज दिया, चलिए कोशिश रहेगी। और साथ साथ रविंद्र सिंह का भी मेल आ चुका है, आपने हमें कहाँ से? पंजाब से मेल किया, और चार पांच नाम आपने भी लिखे हुए हैं। तो चलिए, रविंदर सिंह जी, मंजीत सिंह और गरजोत सिंह है, सुखविंदर सिंह है, ये कई नाम आपने लिखे हैं और सारे नाम मैंने पढ़ने की कोशिश की, आप तक पहुंचा दिए। और आपका अगला मेल किसका है? चलिए, आपका अगला मेल है शिवम शुक्ला जी का, आपने ग्लोला श्रावस्ती से हमें मेल किया है और पूरी फैमिली के साथ प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं 9 बजे वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। सैफ अंसारी का भी मेल आ चुका है हमारे पास लखीमपुर से, प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं पॉप टाइम। जितेंद्र नामदेव का भी मेल आ चुका है, जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, खनक नामदेव, आरोही नामदेव और सौम्या नामदेव, जिला शहडोल मध्य प्रदेश से आप मेल कर रहे हैं और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया कहूँगा, आपने कहा आवाज़ आपको बहुत अच्छी लगती है हमारी, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ मेल अभी और भी हैं बाकी, वो भी आप तक पहुँचा दूँ वरना लोग कहेंगे कि मेरा मेल शामिल है। इंद्रपाल मिश्रा जी, आपका भी मेल मैंने शामिल कर लिया, मोहली सीतापुर से आपने किया है मेल। अवनीश विनीश अक्षत और गरिमा आशा, ये सारे लोग मिल कर रहे हैं एंजॉय। भैया मोनू सेठ, आपने बस छोटी सी लाइन लिख दिया, पॉप टाइम मोस्ट फेवरेट शो, बहुत शुक्रिया, आपको गाना और शो पूरा अच्छा लग रहा है। शनूर अंसारी का भी मेल आ चुका है हमारे पास, बरेली से प्रोग्राम को कर रहे हैं आप एंजॉय पूरी तरह से। और साथ साथ मेल हमारे पास किसका है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। विजय पाल यादव जी, आपका भी मेल आ चुका है सामने हमारे, और आपने ललहुआ जिला खीरी से किया है मेल। कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पिछला प्रोग्राम भी आबशार आपको बहुत अच्छा लगा, छत पर बैठकर प्रसारित कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं, बहुत ही झक्कास लग रहे हैं सारे प्रोग्राम आप लोगों के द्वारा प्रस्तुत। बस यही चाहते हैं कि जितनी भी चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं, देखिए एक और मेल आ चुका है हमारे पास उत्तम नगर दिल्ली से, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, और ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं गाने एक से बढ़कर एक सुनवा रहे हैं।

0: और सिमरन चौधरी की आवाज के बाद बी प्राक की आवाज लेकर आपके सामने
1: बारे में ना बोलिए।
0: और ये गीत भी आप तक पहुंच रहा है पॉप टाइम में।

पर इस सवाल जवाब के बीच में आ गए हैं सुखबीर और ये भी कह रहे हैं क्या। इस गीत को एंजॉय कीजिए 9:51 साथ में कुछ सेकेंड्स प्रोग्राम पॉप टाइम आपका अपना और इसमें खूबसूरत से गीत जो कहीं ना कहीं आपको थिरकने पर कर रहे हैं मजबूर और कोई ना कोई कह रहे हैं कहानी।

और अब चलते चलते कुछ मेल आपके आ गए, मैं उनको पढ़ दूं, आप तक पहुंचा दूं। संतोष चौरसिया का मेल आ चुका है गुरुग्राम हरियाणा से। प्रोग्राम अति सुंदर ऐप पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम को। साथ साथ जय जी का मेल आ चुका है होली नगर उत्तम नगर दिल्ली से, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से। और साथ साथ मेल आ चुका है एम के राज का लखीमपुर खीरी से। दो लाइनें लिखी हैं, हर कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल। चलिए, और ये जो आपने जोक भेजा है ये किसी दिन और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और रेडियो ऑन कर लेते हैं, सारे आरजेज बहुत बेहतर प्रोग्राम कर रहे हैं और बड़ी खुशियां मिलती हैं जब सारे आरजेज आते हैं खूबसूरत से गीत लेकर। साथ साथ मेल एक और हमारे पास आ चुका है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। मेल आया है मोहम्मद इरफान गौरी का, इन्होंने हमें कहां से मेल किया है। आपने कहा है कि साथ में बैठकर सुन रहे हैं सभी के साथ प्रोग्राम, और आपने पता इस पर नहीं लिखा है, मैंने ढूंढने की कोशिश की और प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा, तो भाई मैं शुक्रिया कहूंगा इसके लिए। मोहम्मद आसिफ का भी मेल आ चुका है, हैदराबाद तेलंगाना से, प्रोग्राम को सुन रहे हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। साथ साथ बाबू अंसारी जी का भी मेल आ चुका है बाराबंकी से, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। होप कि कोई नहीं रह गया होगा। आई लव आकाशवाणी ऑल इंडियन रेडियो आपने लिखा है, चलिए।

शुक्रिया। और अब शायद किसी का मेल नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना। चलिए, और मैं यहाँ से फिलहाल लूंगा इजाजत कुछ देर के लिए, यानी छोटा सा न्यूज ब्रेक, और उसके बाद फिर मेरी होगी आपसे मुलाकात आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रजनीगंधा के साथ। और आपसे ये कहूंगा, आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, निवेश गतिविधियों और शहरीकरण की आवश्यकताओं के अनुरूप विभाग को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित, उत्तरदायी और जनसुविधा केंद्रित बनाया जाना चाहिए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालयों में हेल्प डेस्क, टोकन एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, आधुनिक प्रतीक्षालय, महिला एवं शिशु कक्ष, डिजिटल सुविधाएं तथा अन्य नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित कुमार घोष की अध्यक्षता में आज नवी पार्टनरशिप कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक लखनऊ में आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने प्रदेश में मातृ मृत्यु दर बढ़ने पर चिंता जाहिर की। श्री घोष ने कहा कि मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी लाने के लिए त्वरित एवं प्रभावी हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देना समय की आवश्यकता जरूरत है कि प्रभावी मॉनिटरिंग एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 12 साल विश्वास के जन कल्याण अभियान के अंतर्गत चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों

की श्रृंखला में आज प्रदेश भर में विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने झांसी से विशेष जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। लखनऊ के विद्या मंदिर गर्ल्स हाईस्कूल नरही के भवन को खाली कराने संबंधी आदेश को स्थगित कर दिया गया है। आज एडीएम नगर पूर्वी ने जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ के आवेदन पर विद्या मंदिर गर्ल्स हाईस्कूल के प्रबंधन को विद्यालय पर कब्जा दिलाने का आदेश दिया है। अब छात्राएं नए सत्र में अपने इसी विद्यालय भवन में पढ़ाई कर सकेंगी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन रहेगा संग संग।
4: मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए।
0: जब छाएगा 100.7 FM रेनबो का सतरंगी रंग।

0: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
1: नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई।
2: Stay tuned. 100.7.
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।
4: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर,
5: पुरानी जींस और गिटार,
4: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
6: है, ऐश के जगह,
4: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
7: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
4: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो, 100.7 MHz, FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: Stay tuned, 100.7 FM रेनबो,
8: धड़कन लखनऊ की।
3: दिल चाहता है कि तुमसे एक मुलाकात हो, खामोश तराने हो और प्यारी सी बात हो, और फिर उस मत भरी रात में तुम्हारी मेरी बात हो, और तुम बस मुझसे यही कहो कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मेरी कायनात हो।

0: प्यार, इश्क, मोहब्बत और जिंदगी के फलसफों की सौगात होगी हर रोज आपके साथ।
1: तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
2: रात 10 बजे रजनीगंधा में सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेन

कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी नाराज होते हैं, कभी गुस्सा गर्मी भी होता है। यही तो जिंदगी का फलसफा है। और अगर जिंदगी में ये सारी चीजें नहीं है तो जिंदगी कैसी होगी? जस्ट इमेजिन, सोचिएगा जरूर कि अगर जिंदगी में ये सारी चीजें ना हो, रूठना मनाना, खुशी गम, अंधेरा उजाला, कई तरह की चीजें, और अगर नकारात्मक और सकारात्मक ना हो।

यानी जिंदगी में कई सारी चीजें हैं और हर चीज का रंग अपना अलग है, अलहदा है। और अगर मैं ये कह दूं कि अजब आरजू है, अनोखी अदा है, तुझी से तुझे मांगना चाहता हूं। अजब आरजू है, अनोखी अदा है, तुझी से तुझे मांगना चाहता हूं, तो क्या गलत नहीं होगा? इसीलिए मैंने कहा, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं, और जिंदगी लगातार इसी तरह से चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और कोई भी शख्स हो, मैं हूं या आप हो या कोई भी हो, सभी की जिंदगी के साथ जुड़ी होती हैं इसी तरह की कुछ बातें, वो बातें जो कभी एक बार की चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं और कभी चेहरे को गमगीन बना देती हैं। बस यही तो है जिंदगी। और इन्हीं बातों को लेकर आज मैं यानी जमशेद जुड़ा हूं आपके साथ प्रोग्राम रजनीगंधा में। क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी किसी से कोई वादा करो तो उस वादे को पूरा जरूर करो। यकीन जाने, जब वादे टूटते हैं ना, तो उसकी तकलीफ का अंदाजा या उसकी तकलीफ का एहसास उस शख्स से पूछिए जिससे वादा किया गया हो। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं कि भाई चलो वादा किया है तो उस वादे को निभाओ, और मैंने वादा किया और निभाया, यानी आप तक लेकर आया आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम रजनीगंधा। तो चलिए शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन ये गीत भी कहीं ना कहीं उसी लाइन को आगे बढ़ाता है। और जब जिंदगी में कोई शामिल हो जाता है, तब जिंदगी कैसे हंसती है, कैसे मुस्कुराती है, एक नई कहानी बनाती है।

तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं तो ये लगता है तेरी महफिल है। गीत सुना आपने, और गीत पूरी कहानी कह गया, पूरी की पूरी कहानी। लेकिन हाँ, मोहब्बत कौन समझ पाया है? छोटा सा सवाल है आपसे, मोहब्बत कौन समझ पाया है? कोई ऐसे शख्स को लाइए, कोई ये कह दे कि मोहब्बत मुकम्मल हुई है। पुरानी कहानियां उठाकर देख लीजिए, फिर चाहे लैला मजनू की कहानी हो या श्री फरहत की कहानी हो, कोई भी कहानी हो, मोहब्बत को कौन समझ पाया है? मैंने कहा ना, और किसकी समझ में मोहब्बत का ये फलसफा आया है? क्योंकि किसी की नज़र में तो मोहब्बत की बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत कीमती है मोहब्बत, और किसी की नज़र में शायद उसकी कोई कदर नहीं है। लेकिन जो मोहब्बत को समझ गया, उसने भले ही जिंदगी में जो चाहा हो वो ना मिला हो, शख्स की बात कर रहा हूं, और लेकिन मोहब्बत उसकी जिंदगी में सुकून जरूर लेकर आई होगी। लेकिन जिसने नहीं समझा होगा, उसकी कहानी को नहीं समझा होगा, तो क्या होगा? अगला गीत भी मोहब्बत की इसी फलसफे पर आधारित है। किसी के लिए तो काम की है और किसी के लिए बेकाम की।

मोहब्बत बड़े काम की चीज है, ये बेकार बेदाम की चीज है। अलग अलग नजरिया, अलग अलग सोच हो गई। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि बेइंतहा मोहब्बत का असर कहिए कि हर सू एहसास से गजल होता है। तन्हा भी होते हैं तो बार तरन्नुम में, तन्हा भी होते हैं तो बा तरन्नुम में जाने गजल महसूस होता है। और जब मोहब्बत का असर होता है या मोहब्बत समझ में आ जाती है लोगों के, तो ये भी होता है।

चलिए आगे की कहानी इसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन एक जरूरी जानकारी आप तक पहुंचा दें। और ये जरूरी जानकारी इसलिए भी है क्योंकि ये दिक्कतें लगभग लोगों को हुआ करती हैं, और अगर आपको भी खाना निगलने में परेशानी होती है या खाते हैं पीते हैं बार बार खांसी आ जाती है तो ये हो सकता है कि डिस्फेजिया का संकेत हो। और नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस पर विशेष कार्यक्रम होगा FM रेनबो पर। डिस्फेजिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं, तो सुनिए हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार दिनांक 10 जून प्रातः 11:02 पर। और हमारे साथ मौजूद रहेंगे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रतन जैन, जो देंगे आपकी जिज्ञासाओं के सरल और उपयोगी उत्तर। तो नंबर हम आपको बता दें, हमारे नंबर रहेंगे 0522-2238-845, 0522-2238-852, यानी 0522-2238-45, 0522-2238-852। सही जानकारी, बेहतर स्वास्थ्य। आकाशवाणी लखनऊ और FM रेनबो के साथ। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं फिर रजनीगंधा में।

बिना ही बात मुस्कुराए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन। क्यों? क्योंकि तू है शामिल इस जिंदगी में इस तरह, तू है शामिल इस जिंदगी में इस तरह जैसे मेरी मुस्कान में शामिल मेरा गम है। तूफान चाहे कितने भी आए फिक्र नहीं, जब तू समंदर मेरा और तेरा साहिल हम हैं।

नजारे हम क्या देखें, तेरा साथ होना मेरे होने का एहसास है। जिंदा नहीं उस पल में जिसमें तू नहीं, तू है तो हर लम्हा मेरा खास है, हर लम्हा खास है।

बांट लेंगे हम आधा आधा। मैंने कहा ना कि क्या हर किसी को मोहब्बत मिलती है, यह भी एक सवाल है, क्योंकि अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है। कौन कहता है कि वो सादिक न थे जज्बे उनके, सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि ये लोग भी अपनी तरह मफलिस थे। और साहिर लुधियानवी साहब ने ये लाइनें यूं ही नहीं लिख डाली होंगी, और यकीनन अनगिनत लोग थे, कुछ मोहब्बत में कामयाब हुए और कुछ नाकामयाब भी हुए।

और यकीनन कोई भी काम करे शिद्दत तो उसमें होनी चाहिए, फिर वो मोहब्बत ही क्यों ना हो। उसकी मिसाल कहीं न मिले, किताबों में भी ढूंढने से भी उस मोहब्बत की मिसाल ना मिले। मोहब्बत तो बस ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत कैसे होती है, कैसे अनजाने लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, क्या होता है आखिर मोहब्बत में कि एक दूसरे के बिना जिंदगी मुश्किल हो जाती है, ये भी एक अलग तरह की चीज होती है। कैसे अनजान शख्स करीब आया और जिंदगी की एक कहानी बन गई, वो कहानी जो शायद कभी ना खत्म हो। जमशेद हूं आपके साथ रजनीगंधा में 107 FM रेनबो के साथ।

प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाख में, बल पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया ओ।

जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दूँ, अरे ओ

अभी फिलहाल मैं कहीं नहीं जा रहा हूं क्योंकि अभी रजनीगंधा का आगे का सफर है बाकी। लेकिन हाँ, कुछ देर के लिए इजाजत जरूर लूंगा आपसे, यानी एक छोटा सा न्यूज ब्रेक और उसके बाद फिर मेरी यानी जमशेद की होगी मुलाकात रजनीगंधा की आगे के सफर के लिए। तो आपसे बस मैं ये कहूंगा कि आप बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ, अपने दोस्त जमशेद के साथ।